मखल मथेलगी थौरम सिंह लानथुकतुना तहन जरी बसी आकाशवाणी फलगी एफ एम संगाई चैनल दगिनी हौजिक पुंगफम सिदा पुजरकली संगाई चैनल की अखनब थौरम सिंह की लगता सीदहिदा

इमालीबागपु खुरुम जब इसे यानी खक मथंग मथंग हुई ना ताबिरी आकाशवाणी इम्फाल हाउसिक पुंफम सिदा लांथोक चरी तोंगान तोंगान बा सैसक पसिंग देगी लौखत जब मधम इसे सिंह मथंग मथंग हुई ना खुदो की अहान बदा लौबीरसी आर के मोदु सुदोन की खोंजल दा ओसी समरेंद्रना सैरिंग बा मथम इसे करी गी लेनरी आई की इमांगदा

0: ꯀꯨꯟꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥꯒꯤ ꯑꯉꯟꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯈꯣꯡꯍꯧ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕ ꯑꯏꯕ ꯀꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯁꯥꯡꯕꯝ ꯃꯤꯅꯀꯦꯇꯟ ꯁꯤꯡꯍ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯀꯨꯝ 1906ꯇ ꯄꯣꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ 1945ꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯑꯁꯥꯡꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯄꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯏꯕꯁꯤ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛ ꯆꯩꯔꯥꯞꯀꯣꯠ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯗꯨꯅ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯈꯤ
1: ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯤꯅꯀꯦꯇꯟꯅ ꯋꯥꯡꯈꯩꯗ ꯄꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯀꯨꯝ 1906ꯀꯤ ꯃꯦ ꯊꯥꯒꯤ ꯇꯥꯡ 2 ꯀꯥꯂꯦꯟꯒꯤ 8 ꯌꯨꯝꯁꯀꯩꯁꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯅꯤ ꯄꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯌꯨꯝꯁꯦꯡꯕꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 12ꯅꯤꯊꯣꯏꯅꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝ ꯌꯥꯏꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯁꯋꯥꯏꯖꯝ ꯂꯩꯔꯛꯇ ꯃꯃꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯡ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯂꯩꯄꯥꯛꯅ ꯁꯛꯈꯪꯂꯕ ꯃꯃꯥ ꯄꯣꯛꯄ ꯃꯙꯧꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯧꯔꯛ ꯆꯥꯎꯔꯛꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯏꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯌꯥꯏꯐꯅ ꯄꯣꯛꯏ ꯏꯃꯥꯅ ꯍꯤꯡꯏ ꯄꯤꯗꯣꯟꯅ ꯄꯤꯗꯣꯟꯅ ꯄꯣꯛꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯤꯡꯏ ꯌꯥꯏꯐꯅ
0: ꯃꯤꯅꯀꯦꯇꯟ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 7 ꯆꯪꯂꯛꯄꯗ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯤꯒ꯭ꯌꯨ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯄꯟꯖꯝ ꯁ꯭ꯔꯦꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ 5ꯁꯨꯕ ꯊꯥꯛ ꯑꯃꯗ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯨꯗ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯄꯟꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯇꯝꯂꯛꯄꯅ ꯖꯣꯟꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯃꯤꯗꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 5ꯇ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯊꯔꯛꯈꯤ ꯃꯇꯧ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯀꯨꯝ 1906ꯇ ꯀꯜꯀꯇꯥ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯀꯨꯝ 1890ꯗ ꯕꯤ ꯑꯦ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤ
1: ꯑꯁꯥꯡꯕꯝ ꯃꯤꯅꯀꯦꯇꯟꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯟꯐꯝꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯆꯨꯔꯆꯟ ꯍꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯖꯣꯅꯣꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯙꯅꯃꯟꯖꯨꯔꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯅꯆꯤꯡꯕꯗ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯆꯍꯤ 90 ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯖꯦ ꯑꯦꯟ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯄꯣꯁ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯌꯦꯠ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯑꯦꯟ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯀꯣꯛ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯥꯈꯤ
0: ꯃꯤꯅꯀꯦꯇꯟꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯃꯄꯥꯒ ꯀꯥꯏꯅꯈꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯦ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯃꯄꯥꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯅ ꯃꯔꯧ ꯃꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯊꯤꯀꯥꯗꯥꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯖꯃꯤꯟ ꯌꯥꯔꯨꯈꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯒꯤ ꯊꯤꯀꯥ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯨꯠꯈꯤ ꯂꯧꯌꯥꯝ ꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯃꯤꯟ ꯌꯥꯔꯨꯕꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯜ ꯃꯊꯨꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯃꯠꯈꯤ ꯃꯔꯣꯜ ꯃꯔꯥꯜ ꯇꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯅꯤꯡꯕ ꯀꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯜꯂꯛꯂꯔꯣꯏ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯑꯃꯒ ꯌꯨꯝꯕꯥꯟꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅ ꯃꯤꯅꯀꯦꯇꯟ ꯃꯄꯥꯒ ꯀꯥꯏꯅꯔꯛꯈꯤ
1: ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯁꯤꯟꯐꯝꯗ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯣꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯃꯤꯅꯀꯦꯇꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯔꯝꯕ ꯑꯏꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯏꯕꯒꯤ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯒꯨꯟ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯏꯕ ꯕꯁꯟꯇꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯌꯥꯋꯣꯜꯗ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯁꯩꯔꯦꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯅ ꯏꯖꯕ ꯁꯩꯔꯦꯡ 60 ꯌꯥꯎꯏ
0: ꯃꯤꯅꯀꯦꯇꯟꯒꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯏꯕ ꯁꯩꯔꯦꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯕꯁꯟꯇꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯏꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯥꯡꯕꯝ ꯇꯣꯝꯕꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯔꯝꯃꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯤꯅꯀꯦꯇꯟꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯃꯤꯡ ꯇꯣꯝꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯕꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝꯅꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤꯡ ꯑꯁꯤꯃꯛꯇꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯅꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯄꯟꯅꯕ ꯊꯦꯡꯅꯗ꯭ꯔꯤ
1: ꯃꯤꯅꯀꯦꯇꯟꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯡ ꯑꯁꯥꯡꯕꯝ ꯃꯤꯅꯀꯦꯇꯟ ꯁꯤꯡꯍ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯏꯔꯒ ꯐꯣꯡꯂꯝꯕ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯒꯤ ꯄꯨꯀꯩꯗ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯂꯝꯃꯤ ꯁꯤꯡꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯊꯦꯡꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯩꯔꯦꯡꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯔꯝꯃꯤ ꯁꯤꯡꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯁꯩꯕꯒꯤ ꯅꯤꯆꯥꯏꯕꯣ ꯑꯁꯩꯕꯒꯤ ꯁꯩꯔꯣꯜ ꯑꯁꯩꯕꯒꯤ ꯖꯣꯏ ꯚꯥꯏ विदाय आशीर्वाद अमदि सनरिक परें हाइरिव सिंह अशीन
0: कभी असांग मीनकेतन इब सैरें अयामबदा नुंगशिबगि हिरमदा युम्फम मोइदुने इरमी महकना नुंगशि नुंगोन गि लमदा टोप टोपना थवाई याउने इरिब खुइदगि महकपो नुंगशिबगि सैरें बनी हाइना नैनारोय सिंगना खंगनै सिंथाने महकने इदुना फोंगलब लाइरिक सिंगि मतिक मगुन तपना तपना खंगनरकबदगि ख्रिस्तकुम लिसिंगमग चमापन हुबुतरा तरेता महा की सैरेंगी लाइरिक असैबगी निताइबोट मिंथोनब लाइरिक असिदा साहित्य अकादमी एवार्ड पीदुना इकाई खुमनकी
1: आइबा मओइना मिनकेतन सैरें खपतदम कुथारंब मिशक अमति ओइखिदे थैदोंग सिंथाबा याबा अमना मणिपुर दे इदुना फोंगनरकलिबा असांग वारी उपन्यास सिंगि मरमद नै नरगा ममल लेप नब होना इरंब मिशक महागुब नईनवारें इब अब से अगनब मणिपुरी साहित्य की तैबंगी अतांगे इरमसीद मीनकेतन अहानी लमजानी सिंथानरी मखल खुद इन फोलब मैत उपन्यास नईनब याब लाइक ओरी
0: इब की हिमसीदी मीनकेतन माइथों अब तोान तोान हिम कयाद खुद थारंब मिशक मैतलोन की अरब वही अनौब मतनब वाहनब वही वाहन खोजन इग मैतलोजन है मिथोंना लाइक फोलमी मथी इब फिदा कलब मिशक मसान मसासी वारी सकम मिथोंना लारोल अमब लारोल अनीसुब है ऑटोबायोग्राफी इरमी मीनकेतन हिंदू लाइनिंग थाजब मिशक लाइनिंग मरी लेनरीब लाइपो श्री कृष्ण चैतन्य देव की पुंसी वारी समलपन इथोकलगा पिकतप लाइरिक फोंलमी वारी की मौद इब वारें फोलमी मखल लाइकोई परें थोदना याब खुद इरब लाइक की टोप टोप मगुन ताबी मणिपुरी लोन अभी चुनाब वह खुना इरब की खुई खुफोंद टोप टोपना ताय
1: मणिपुरी लाइक लाइसु पाजरी लमदम नत्तब अतोप लमगी अईब सिंगना अतोप लोनद इरंब लाइक सिंगी महाव पीननब होनरमी असुमना लमदम सिगी लिटरेचर की पुकैद ट्रांसलेशन की मसल हापकत्नब होनरंब मिशक अमसु कोइरमी सिंथाब याई महाग माइकल मुधुसुदोल दत्तन बंगला लोनद इरंब खंद काइब्य मेघनाद बोध काइब्य की सरुखरा अमदि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि मैतलोन हंदोकलमी नत्ते इंग्राजी की अफाव इब विलियम शेक्सपियर की

चथाजरी बथौरम परिंगी पुंग निपाल गमिनी निफुनिथोय ताबिनिंग बेशेगी खुदोलदा गुड मॉर्निंग मणिपुर थमजरी तोंगान तोंगान बा सैसक पसिंगदगी लौखचब गीत फंगबिगनी पुंग तारा गमिनी अनि पुंग तारा गमिनी कुंथ्रा निथोय थमजरी रेडियो लीला नुपीनेदी हायरगा लीला इबा अहिबम जितेन सिंह लीला पुथोकपा अधिकारी मयुम गीत चंद्र शर्मा पुथोकपद तेंगबांगबा अथोकपम सुभाष चंद्र सिंह

0: मखल मध्यगी थोरम सिंह संदोक्तु ने तहन जेरी बसी आकाशवाणी इम्फागी एफएम संगाई चैनल दिगिनी हौजिक लांथोक चेरी अतोप मंगाल थोरम असिदा महिरु सिंगदा लाइब्रेरी की कानबा अमदी चंगबगी हैनबी सेमगतपा हाइब हिरम असिदा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इरोई सेमबदा लाइब्रेरी असिस्टेंट उइने लेरीबी मोंगजम सोबिता देवी का उनदुन वरी साबा उनदुन वरी साबिरीबा केनी कोंखाम थोरम पुथोकपा थोकचोम रेनुबला
1: आकाशवाणी इम्फाल की अतोप मंगाल की थौरम ताबिरम लेबा ख्वाई पुमनमकपु तराम ओक्षरी इखाई खुमनबो उचरी नसी एखोय की स्टूडियो दा महिरोय सिंह दा लाइब्रेरी की कानबा अमदी चंगबगी हैनबी सेमगतपा हाइबा हिरम असिदा खना नैना नबगी दमकता सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इम्फाल की कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इरोय सेमदा लेबा असिदा लाइब्रेरी असिस्टेंट ओइबिरीबी मोंगजम सबिता देवी एखोय की स्टूडियो दा लेंगसिंदुन लेबिरे ओजाबु एखोय की स्टूडियो दा तराम ओक्षरी
2: मतम न्यूज पेपर मुक्तबो सिगुम्बा मयाम अमा याम फसन ऑर्गनाइज तौरगा मदु थम्मीब मफम छात्र अमना नत्रगा मियो अमना चांगगा पा दन लोक्सिंग लोक्सनबे याबा अदुगुम्बा अखै फजन मौमनि तान मफम चाना थामगा सेमिब मफम दो अखैन लाइब्रेरी नि हाइन लोक्जै
1: ओसा अखैगी लाइक्सि खले लैरुरे चहुम मजामबि मना तगले सिंगम लैरुरगा हेक थम्ब मतम द लाइब्रेरी ओइब यागद्र ओजामा
2: मधु लाइब्रेरी हाइने बुदी याय अदु ओरगसु मसाय एगे रिलेटेड ओइबा सामनाय द अखैगी स्कूल कॉलेज सेदे स्टोरीबा अखैगी लाइब्रेरी सिमखल अहुम थोन खायदो
1: हायजेरिबा
2: अन लाइब्रेरी सि एकेडमिक हायबमने स्पेशल हायबमने पब्लिक हायबमने दे अखैन सिगी मथक्स अम नेशनल लाइब्रेरी गायना अखैगी खरासु दुम जावजेबको अदन मसायगी स्कूल कॉलेज द अखैन लाइब्रेरी सि फजन सावखलनगे फजन आंगांग जिंजे लाइक कमाइतर संगनगदगे हाइबगी वखलोंद पुजरप तारगदि खै आंगांग सिंगसिना माई दरकार लेरबे लारि सिंगजे सेलेबस के मतुंगिना सानाबा अदगे खैगी माई रेफरेंस ओबे याबो सिंग अदुम द लेरगदि याबा अदगे पब्लिक हरगना मुंग खुदिंग मंगन पाबा याबा ऑल सब्जेक्ट खुदिंग मके थामिबा अदुम लारि सिंग अदु हाइजेब तारे को अदुगा नसाइगी स्पेशल लाइब्रेरी हागना खैगी लो कॉलेज कुंबसे अदगे रिम्स कुंबा मेडिकल गी ओरो एग्री गी ओरो अदोबो अखोइने मसे करम कांसो इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी एकेडमी मनुंग चलदम दसे यावे अदोबो अखोइगी नेशनल लाइब्रेरी गायने कलता द लेरिबा अखोइ मयाम खुदिंग मन पाबा लाइबा अदगे अखोइ पार्लियामेंट द लेजि द खन्नबा मी खतन पाबा याइदना सुमाइना एनेङ साइगे लाइरि खर लेजि रगसु एने लेरिबो लाइतो करी सब्जेक्ट द रिलेटेड ओरिबनो अत्र कमाई तो इनो हाइबम दि दरकार लेबनी ना एने पानिंग बगे समनाय द एयुन द लारि सवा छात्रो हेन लिजे मदो एने पानिंग बगे अपा मै लेरबने दुबो पब्लिक लाइब्रेरी ओइन होय कैसु काइदे सेंगो पिबति याय अदुबो सेंगो न बैदम त मफम खै स्पेस सम दरकार लेगिनी अदगे पाबिन ब मि संगे लोइना ना गसाइगे थांगो द रिपोर्ट सिंगदो फसना मेंटेन तो बोंदि संगे दना ꯁꯤꯒꯥꯏꯟ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯦꯝ ꯌꯨ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯗ ꯍꯤꯇꯦ ꯆꯠꯄꯤꯔꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣꯂꯣꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥ

0: membership to fill up tarum tung da ai member oi do ini ada ini moine library card ai na library wai ba ge card am di pira ne card se ma masing ama pi ba ya na traga hum pira pa ya sam na da khoi college da heta haiban tam da phd da card rupi msc da card mari pi general da first year second year si card ani dang pi third year fourth year yor ga de card hum pi ba sumaina ma gi mafam du gi membership am oi ba sin na khwai da gi darkar oi ba अंदर मेंबरशिप वो रहने आई फोटो समेत तो रहने माय पीवन थोको फी थी रहने अदो को स्कूल कॉलेज की दमुक तदी मसाना लाइब्रेरी फी है ने याव रहने एनी फॉर्म नरोग अदम लोई मेल रहा है दो वर्ग दे एनी पानी बोला रे खाला दम पावे यारे वाई बे यारे 15 days ओगेरा 30 days ओगेरा अदो दिमाग माय लाइब्रेरी तो किस नबी रूल की मतों के ना पावे यार नगो मसीदा की हेंदो की बता रहा दी अखोई लेट पाइने न पीबगी मसल लाइनी अंदर कर्गुमा लाइक तो मांग ही बता रहा दी ऐ काते में उन तलाई से मांग रहे खाले जब दो दी ऐ न लाइसी की हो जो जो पीरी बम मन से सी अगर ऐ न अदू की मम तो सिंग बम दर का ले बा न तो लाइसी ऐ लेरे पीर का अदू माइ तो बा मा सी ने कोई यार के दी फानो बहुत नमी ने
1: सेक्शन
0: सी
1: बसी
0: हाई
1: को
0: सेक्शन
1: जा
0: बसे ने
1: होय आई जा होजी होजी फंगी बा लाइक तदी मा मन दो पीरे ग सुलाई बा फंग दोइ ने बा
0: होय
1: अदु ब अतांग बा लाइक होय फंग द्र बा आई जा होजी क प्रिंट टाउ खि द्र बा ग ओय ग दी मा मन लेरे हाइ द न सो लाइक तुगी वैल्यू दु दी लेरे हाइ द न सो लाइक तुदी फंग र ओय ब जा
0: फंगारो
1: अदु न मा से खोइ खोइ अपुन ब गि ने हाइना खल लगा
0: यान
1: याम
0: सेक्शन ना
1: होय रेस्पोंसिबिलिटी जे पुन थौ दांग ज लोंमिन बम चंगि ने को जा
0: सो
1: दे
0: मे सो सो
1: याम नुंगा जा अदा खोइ स्कूल द सो हांग यु जा लाइब्रेरी से होय हायर इंस्टीट्यूट न तब दा खरा खरि हाई स्कूल के लेवल द हायर सेकेंडरी के लेवल द सो अदा मोइ से द दियो जा अखोइ गि आंगांग सिंग सि गि चंगनिंग न बसे अदा करी करी कमाई कमाई तरो खदि आंगांग सिंग द लाइब्रेरी गि हाइना बिसे पोलक पय हाइनो जा न खन बि बले ब
0: एने तिजी दा क्लास 19 सि तमक मतम दा खै लाइब्रेरी संगे मतन दा खै ओजाम ना मदो लाइब्रेरी प्रोफेशन गन नते खै ओजास न फजन मेंटेन तरोगा खै ए लाइब्रेरी संग ओ पार राउने सि सि लै नै समाय तवे गाइना अदन हाइब दो दा खै लाइब्रेरी से कमाय त गुन संग येंग ओसे गाइन तरोगा येंगगा दै लाइ मया सिन जोग्राफी सेक्शन नि सिन अदुनि गाने लाइ तो तरा कुन दुमाय दंग नि को याम चाव दे न छ दे अदुबु अखोई द नॉलेज पीरी तो कना नो मदो कॉलेज अखोई स्कूल दो ओजासिंग दो ने बा ए स्कूल लम लेरे दी लाइब्रेरी म लेबे ने अदोना अखोई असेंबली तो मतम द ओजासिंग दो ना अखोई की नोई मिंग चनो तम द लाइब्रेरी फी लोरी बने अखोई स्कूल से द लाइब्रेरी म लेई को हाइबे दो मखंगन बम दरकार ओए बा दो लाइब्रेरी से द नोई गा आंगांग पी बसिंग जिगी ओइना पिक्चर गुम ने खांगदे याम इंटरेस्टिंग ओइबा आंगांग जिगी ना पामजगदा बा एंग हातांग से खोइगी लंच टाइमिंग ने ना तर हाफ मतन सिदा खोइ लाइब्रेरी संग से खोइ सान पिक्चर मसे काव कनी गाइना खोइ सिनेमा गा याम कापा दम येंग एबति जिदा अदो से जासिंग दना लाइब्रेरी असंगा सिदी आंगांग सा मयाम पुन्न समाय तोनी गाइना तोबो सिदा याम इंटरेक्शन जे आंगांग इंटरेक्शन जे मोइगी लोबो या वाइ तारे को दंगा हसु पथान बा मसाय हुजिंग मतम दे आंगा ये नंबो मंगल लाइ से सलनि ना माइ जु पथा दरे यम द हला नि टिसन तरनि अदगे अमु गमनबा स्कूल गिमे आंदो पानो फननि अदो न मसिदि अखो स्कूल जु हा पथा बगी टाइमिंग सि द लाइब्रेरी द संग ग मगे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम सिंग अदम तहन बदन जाय न खनजे
1: होय मागे मागे चही दुगो जाना बसे
0: जाना
1: थंबिर ग
0: गोजा
1: हजिंग जाना खै फिल्म ग सु कापी हाइबा सुमाइना सु तापी बसे सुमाइन तौदना लाइब्रेरी न सिन बयाबा अदरग पांगथोक बया बकरि खरि थारम बादि लाइब गियो जा
0: अदु दियाम लैदा अखैगी स्कूल द हारग सु नत्र कॉलेज द ओरग सु खै लाइब्रेरी अवेयरनेस प्रोग्राम गुम बको अदगी लाइब्रेरी ओरिएंटेशन हाजे सुमाइना दुम सिन बयाय अदगी खर चाउ द चाउ रगन सेमिनार गुम कॉन्फ्रेंस गुम दुम तौ बयाय गो अदग अखैगी लाइब्रेरी मसाइ अवेयरनेस सर्विस द अखैना दुम अइने असेंबली द ग लाउथोन जनिंग ब वाखनजे से लाइब्रेरी से सुमाइ तो बने दो नोय सुमाइ तर से संग दमने सिदे द सि लाइबने अन से संग दे लाइक तो पाब द नोय याम नुवा र दोने इन सिग्न पाब सु यारने अदेगी नोय गि सानन निबो कांगबो द न सोम नाकन सानब गे दन जेंग बया नि सोम द टीवी द खोइन थाय चनेल जिंग दि येंग हागन सोम द यानि गायना खितंग सिन्दो पिरबो दमाइना सगी अवेयरनेस मखन मखन बिबिरबो अदेगी क्लास 8 तगी 12 फाउ द ग लैसिदि मयाम ओरिएंटेशन ओइन चांग एबसिदना क्लास लोबी बदम जारे बसी मतांग सिदति साइ पी बंगांग हिदु दति कसु खंग द्रिबने अखैन नॉलेज खतंग पी बय वाने लाइब्रेरी म हाइबम लै लाइब्रेरी दो अखै समाय तौ लै गाइस अखैन खंगजेर गदनि को अदो खेरंग सारो पसिदति चांग ग मागी अवेयरनेस फजना पिबिरबा ओरिएंटेशन फजना तौबिरबा लाइब्रेरी कानब कैनो खंगनबिरबा दे ओजासिंगनसु याम फजना इंटरेस्ट लोबिरगा आंगांग सिंग लाउंगा सिदि आइ पारा दो

0: आकाशवाणी इम्फाल हौजे मणिपुरी दा मरुई बपाउ ताबिरसी
1: आकाशवाणी इम्फाल हौजु पाउबगी मरुई बपाउ मुख्यमंत्री यमुना खेमचा नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल मिपम दा सरुक यानबगी दमक ngachi न्यू दिल्ली दा मम इम्फाल थादोक लगनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभापति ओइदन मिपम असि न्यू दिल्ली दा पांगपो कदबनी पीएम जनमान एंड दास वागी मखादा सिंगी जिला सिंगी मोबाइल मेडिकल यूनिट सिंग ngachi मुख्यमंत्री यमुना खेमचा न लमथा लगनी राज्य की हेल्थ सर्विसेस डायरेक्टर इन सिनबा थोरम असि ngachi आयोग पुंग तरा मखाइदा लमफेल दे लेबे हेल्थ सर्विसेस डायरेक्टर त पांगपोकी पांगथोकनी इंटरनेशनल आर्काइव्स दिन लाख हाँ मपाल थोरम राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ये पाउचे पीरगे सेक्यूरीटी फोर्स सेनापति जिला की मनु चन ती खुलें चेक पोस्ट अरंग अचत अव चेक तौद सापोन केब तरनीद हाबना ग्रांड आई टेन कार पुरब ब्राउन सुगर चिंब पोलम फागले मरी लेने मो अनी फारे मध्य प्रदेश इंटरनेशनल ब्रिक्स एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस होगनी चुप चथगद मम तोान तोब कुन्माथोद लाप लघु सिंह मंत्री सेनेट ऑफिसल एक्सपर्ट सरुक यागनी गृहमंत्री अमित शाह न्यू दिल्ली लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम होदोलगनी मंखल हेन कानब फलगनी राजस्थान की नौसुप थब सरुक विदर्भ भारत की अवा नौसुप अवा थ राज्य

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अदम ने थोरम ताबिरी बासी आकाशवाणी फलगी FM संगाई चैनल दिगिनी।

0: मखल मथिल की थोरम सिंह संदुक्तु ने तहन जरी बसी आकाशवाणी फाल्गी एफएम संगाई चैनल दिगिनी हौजे मखा ताब थोरम सिंह की दमकता कोंजेंगबम निर्मला चनुदा खुच नजरी
1: थागचरी एकोगी अनाउंसर प्रिसिला थोंगाम्बो थोरम संदुक्तु ने तहन जरी बसी आकाशवाणी फाल्गी एफएम संगाई चैनल दिगिनी

0: बाबा ऑफिस हल अब्रो
1: इशा तो बिया इपा ऑफिस हले यम शाइन है आइंगो दो अम तेती पोरो रे इपा दा इपा थकिया
0: होय बाबा पुरके अदो बाबा नसीदी नासा सिरा
1: इहे ना हा दे युशारी दुदी नोय ना मान चाजो दो नो जागम थे दे को इशा तो बिया ना तोय ना चाबछि हकचांग नाम फलम जे ने
0: इस इस बाबा ना हाइजिलि से यंगो पैसा ती मिंग दद ना मी याम चाद्र दी फै हाय दो बा
1: हाय हाय हाय अदो हकचांग जु फबा हाउ जु हाउ बा सांगोंग गो मल्ला फोय गो मचाले जिको अदु इसा तो मी आइ मो दो हाले लोर को चलो ने बाबा ना हक तो मांगो जि दा उंदा हक लांगे बा चलो चलो चलो
0: हाय बाबा लौरु के
1: हाय नुमे तारम लै जिबा ओ दो न सागरा दो सैता कालेन दादी हरक पद गायरी हौजिक ना छियो ना छाले बिजन दी कंदो दोरी बा पो चई माना मसिं पुन मुजे लोइन कंग मत आवनी ने खांगरे ज्ञान ताब साधना चिंद दी ओवा थाजन जी हाय ना कोइला लावरी बा अदु मखुत मखुत छिंजंग पा हे तो मरे रमी होइदा है चिंद कई दा पंथा धारग लोरे करी उदो लुगम ना
0: बाबा से आइंग बपुरे
1: ए ए कदा कदा कदा कदा ए कदी नो इसी मन पोरे इसीबो हाय हाय मई बदल सिंह तो फन याम दाई ने लोय खबर छिबो
0: बाबा नसी दी याम साद्रा
1: होय ने नान के दी नसी ने ये ने छावदों तो विने
0: अदुने ने बाबा असाव खंगफम खंगदना इमाई बानी ना सोरो की खोंनांग असो बम खोंदा हक्सिक लांग बदने लोइन थक तो खरे
1: हा लोइन थक तो खरे
0: अस बाबा यामन खबर खंगेदा कोपु चिकली चिकली तौरेदा
1: बेमा नोय नमान सागी नबुक छेदी ओखा में चलली है नति अदु या महई महई दुबु लोय ने थकतो पदु जाउन देबा गो
0: बा सामन बदु द इसिंग थकपबुदी हई महई दुन खर फगद्रा न थकतो खिबने
1: आ आ आ नुसा मरकता वान ऑफिस चलु बाई खोइसी उरुम द ले होबला खोइना करिम द छिंथा न द्रिम दिदे
2: ओ कनाबुनो सिंथाना द्रिदुबो
1: या
2: युमदले हबो खोइबुरो अदुम नगादि हाइबिनु को सा इसिंग थोंगदना वासिलम छेंगदना कोलिक फेंगबा फिसु फिजामबा नुक्सामरखसिदने वान होना खरपोनि नत्र नेबेमा
0: चुमेमा चुमे
1: या
0: इमुंगि अकोपतासे मीनादि थबोन उबिदाबा अदुगने थबोन तौबदना ने मंगम सानबे हेंग तोवाटबा
1: हाय हाय हाय तालिंग देखो तालिंग दे श्या मी मरी खकी कोल फेंग मदबो कयंग खुइदोरीबा हा नुगाइनी नुगाइनी नुगाइनी ने आ नुगाइनी प्लीज गे लोय यो टोके नुगाइनी ओजी नुगाइनी
2: करी नो चथो को नोय दि चानिंग बदा चा थकनिंग बदा थक तौरिमनी युम द लेहेबा एखोय दिने पुल लग थंब सन्दु मंगाइदि
0: बबाय वता छिदि आइ बहु इकाइ ब फौरा इदा
2: यारे मोय बाबा एखोय छुमी ने इकाइ ब खंगे हई मही खर कीदमक अदु याम ना सांगथगदब नती लाइकाय तारग इमा इसाबु करिनि हाइने किदोइनो हयिंग मखैदिने था असु खर खर दि अदुम खाक्सेरमगे प्लीज ददि यों थोक बिनु को
1: ये ये लंगो इकाय ब खंगे हा लंगो इकाय ब खंगलो डॉक्टर ब थबक दुदि इकाय ब खंगम मादि ने छक
0: सेंग मैने बाबा प्लीज मति यों बिनु को
2: मोय बाबा इजांग ना पिगा दि लेबिर अब नत्रो कैनो कैन दलेरक ट्रमाले कैनो सिबो
1: प्रेमिला हाय नुपारा थौदाबा पुछलागन चागनि हाइबो वकन द खल्ल नुके दोगी बियामा
0: बाबा अदुम न सुलान खल्लु नुदा जथोक ससिनदा मतम मांगबा भरा तिंगबा अदि खलगा बाबा न उपिसलक पद लैबिर ओ हाइबो ओइरमनि
1: आ नमागि बिसंगसंगि बैदुला हा नुछा छाबजदा हा हा काम खै लखोइन वादरम इंजांगला बिया मुंग लैबो गमजेत्रि नै बियामा नमदै थोंगेरा थोंगोइरा नखोइरा थोंबतोरो ngamdre ari bisini
2: ye ma hairu no hairu no hairu no nangi baba singa sidine shorama itau tauram
1: ah madu khangla chalo go puk phabagi thabak wa tawa ngamuk thungdewi wa jo tok thowa chine lungcha ji bu loi namala chala chabro ha mi de chada bro yongle khawang ma yam bu chunari ma yam che nami tu udro che ना खोई दी नो मुगी क्वा मतब तो तरा मरी मंगा चार गा नाना कोंग ना मोबाइल दु नपका दुम लईने
2: आंग दे हेंगांग ये ताजन निंग
1: दबना
2: नो मगी क्वा मतब तरा मरी मंगा खम चाबो बो सिबु वा वइन तो नी दि कुन कुन था हे
1: कुत्रा छ कुत्रा छ
2: माछा सि दि
1: नंग ल के आमे भजदरा ये हे तो दो यंग ने यंगो 망고 미시 영어 미랑이 미랑 아따 와이 젤리 남야이다 팟팟팟팟팟 깔마이 독도리 노이 나만의 자제 하 깔마이 독도리 노
2: 나노 막 모이 봐봐나 아 와이 시티에는 빵앙가 앙무도다 가신 거야 강칼로가 와이 시법분이야 아스 아얌 하이나데다 딜라이 쿠비암 주이야바
1: 아이 하이 하이 칼을 도이는 셀루 주우담리 칼을 도이나
2: 비마 아 사이들레로 금시 딴닝다 보나 목도 별로 이랬세 라오라 Nomi dang na, haba yanar bakai tenda, imai sana saning bakari yau gi yingura si.
1: Kan tuh ni tuh si tuh.
0: Asal tiba ba, na asal wawa na lera ake ko.
1: Ibe ma, nama na ke sian ni, ko, sel tan rup chupa sian di mana paim ni. Ko, nama da hai ro, baba gi di champut la, champtong la, iya iya re, chalo.
2: Ngoi baba no wang ang ba si mak tabu ne, marai gi ma thak tane ko si yama yau de he yau ba. Ibe ma, lao lao, pat sa tu ura si. Oh, hinging I see that signing by the side that they call.
1: The whole road, they call. Talk and talk and talk.

0: madu wahi wari ne ha isha chu wa da ba wakhal chu ne na ta na chat pa passenger gari chat pa chna machin ma pharam ni be ma ko thau phang ma phang da ba ya wa ba chu lai re roi adu ga a chu wa chan pham chu pu tho roi da na ko
1: be ma nangi baba da hai bo wa se karim te he ka na roi ma gi wa khan se ma yam ga man dram ni a moi baba a sa thang tok ja re
0: a hoi hoi hoi hoi ka ka ni sa no ka ni sa no
1: ओ सौगरी थोंगे कांगो मंगोवे
0: ए हौली
1: से से सा सिद थांग तोए
0: हो हो हो ता
1: बेमा आ इमाई सा सुसा थो ओरसिना
0: ए ला ला ला चार चल आ चार चल आ अस दाउ या ये छैता फोंमा लनि हाले थेंग नै ने हे कोरी नोले नंगी सौरी थोंग मजिबो लहा निङा याय बाइन लले पदबो अम तो याव दे छिबो दत अम तो हाफ तरबो
1: हे मा बाबा ने याव दबो आइ खोइ दे याम याव हे मा बाबा ने हाफ तरबो
2: सचि वाने न छिकांग छि
0: आ कांग उजिन मारु ओ लम मोरो छारे बा पीले हे सैता आस पमान छि तरु पुपुरा छोरे ने इंगो ने याव रि छे याव गो दबो गा ने याव दबो पमान वे ने याव द ले दे ने आस सम थगाय मु छावम छु यावरे ने सैता पेले दु सैता चा थोंगि नो गो द मको मरु खम जिन बछु कांग दे कांग दे थवोय न खल या इमो द हाफ बरे काइनो मरु न मरु ल साब ने आइ टोक द तो गे द आइ त
1: मबा सा तो अब्रो काइ गु नो खासि त चाइना कांग दे आंगांग म सा दोंग न साब द नि गाइ तो खरो नि
0: इबे मा चे बाबा की चीजों ने नमान सब पुलाव कर लो को पुलाव कर लो को

0: moi baba walking han bi re
1: ha hoi hoi hoi han ja re kari tok pi ge da ba
0: han dak ti walking ga se sang sang na zat le ne ko
1: a khala zat le
0: zang de thong bi hai ja ge to ba
1: e ai ye zak thong bi ba le mu ta re bla
0: no pa de zak thong hai dra bo matang matang ni ge nu
2: mai ne matang am phang ge mai ni
1: hoi hoi hoi thong ge thong ge thong ge ka ka ri sa no इंसान दो मल दो को चाक दे कोई रो हम तो इंसान दो शब्दों
0: ओ पान के थांग जिंगे इरो लसे आई आई पान के सर मगे संबीरो ओ संबीरो संबीरो
1: हाय हाय हाय
2: हाँ नसीदी नुआई नहीं अब नुआई नहीं अब बोरा देगी खाई दब चेंग दो पच्चर थोंगे अतु क्या पान इरो न बतुना मोल मामा मचादे मोरो शाह पामले आई ना गलंग ले रख पा उ अम थाक पद साबदु मरी थाक चन गे नुई नि
3: अश कई नु वन हाय दिबो चाम तो साब यारो दिबो
2: हाय हाय हाय हाय हाय तुम यानी यानी यानी
3: कमा यो तुम
2: इ पातो के इ बानी गी झांग दो हाना खाइ दो ओगा नमा ग न चन ग दु न ताप तय हा पब दी ज्ञान ता दो मी खर ज्ञान ता बरी गे म कोइ न थो म मतम दि जो म कोइ अपा म तो रि दु दी
3: ओ हा बाबा थोक तो रो आई खंग रे बासि आई सुने बाबा होते नुइ चा तो
2: ngai khu ni he ngai khu ni ka no khan din dor ga cha ga dam ni he ha khara di sa che ba na tra di ba om khan khi ne ba hai hai hai baba chak thong ni nang chat ke ya de ko nang chat pa ya de ko baba chak thong chang hai
3: chang chang mo yang ngang ne wa yao ring si chi ga ti yong de ni dor si de pai kha de hing hai lo sai bin ni ka mai ding de si de
4: lam
3: za lam za
4: to lo phang bra lu pa sa ni pan kha ga piu ba
3: si me ma to lo ka phang de da kai dong lo pi sa no
4: namza ai khudo makak sabne adi asaman pi ge na tawne da kai dawai phang doi no
3: tai te ta phang ni adu ga pi rege
4: yai baba da da sum hai ba do sar ani na tawne da
3: adu ibi me nang bu laik to tamdra di phisa lon sa tawra kai no sin khara khadi ta na bu tawne nang bo nang gi tamsa baba da gi lo bu dune di nang gi naning thumoi hai ba
4: asya re to ai kai ta ta sin indre namza तारीख तरे त आइ लुपासा नि पान दो सोनु को दाम जा
1: आइ बुङा
3: ल बाबा हो चोबो
1: हाय हाय हाय इ पा चा लुय रे हे चा थो जि लाव दला लाव लाव लाव चा का सो जि लाव
4: बाबा चा लुय रे ब्रो याम थु न लो हे
1: हेरा मी मरी खकि चा थोंग दो कयाम कुइनि हे के लोय न मा दु दि कदा यो खरे मा अबु उ दि ना चा जि पुल चा थोंग मि न दि फदो बा
4: होय बाबा चा रे से इमा दो ममांगे पुखरी दले हौबने बाबा होय चा बा होबिरमो ऐ इमा कौ रुखिगे
1: आ हाय बेमा फल्लाउ को हाय चा छु उत्रम निको
3: हाय मा बाबा क कइनु गासि दे ओ दोंग गान करेदा
2: हे नमा ग नचन ग नचारे दो नुमे खुदिंगी अछि दे हेलनि हे
3: हा
2: इबा नि दे खरे खरे दा हापा अरे बुंगासि दि बाबा ल चाक थोंग ने चारे के दो है हप थरम ले जाओ जाओ जाओ
3: जाओ बाबा
4: दम जाओ बाबा की पान के थांग जी इरो मदु बु कम दोगे
3: बाबा
2: हो
3: हो हम ने ए सा खंग ले आ ससु को बुजांग यो नफुंग ले तो चा ले
4: सास ये थांग जी दिया मुरो के हम थगे आ तो थांग ले दा
0: आ छा बरे ने बे लोई रे हसी
3: खरे
0: ये मंदरो कई नो
3: कोदी कम
0: कई नो साक्षिना क फौ कई नो फमान गी फमान मग दा कदाई दे गी सी यंगो मि सिबो जेउने बे मा ना सि सु ने
2: ना दु जा ना दु जा जा
0: बा हापी नो यंगो अकोई दे ना खत ता हापी बा
1: ए राधिका
4: मुरोक ना चा ब ग ngम दे दा
1: मा खोय के जाफम दो को पंजा चेगे दि हाइदे मेगे पुखम द ममेले जे कुर कुर गो ओते यंग चाउ ने तुम चाउ
0: आइ लोइ न खांग बने बिमा
4: इमा
0: काने दे मा बुक फत ब मेगे पुन ब होंगे दे इमा इजा तोंगान थोंग सासि
4: इमा
3: ओ जो रो द कला ये तोंगान नो
1: खरे ने लो रे दा वाई छंगे आइ नि कुइ रे ना मो चोबा
3: वा
1: हंदे कि मतांग जे जे कि यम साब नंबर यें जाय
4: पा जा को सा को सि बा नि यम बांग दे काई द्रो
0: हाय नंग जु मोय के पुन गे छु पुलु इ माई सा दि सेन छु थोक दे sen thokpa ma koina ti na ti na ngang badu bo nang mu namai du ikai dra haiba
3: pulu pulu pulu
0: oh ikong ikutek ti e imi tang de lai na yat pa khaya ne sara hin ba houna bro
1: madu gi wai tu ma di hajik ti chana dra mi hai mahu sa panga ngang na changna ba gi wani be ma cha cha cha cha e ipagi lukha ka jinang ngam ta chengi luko
0: kai no tongan janar ga bo lukha chagum koli phenge bro ngasi dagi ban
1: e ka hai ni chibo hauje dagi haura ga da ban he era asi gum thabak chi de yong ga i pa jinga da tau da la ba thabak ni kai su khan de pai chau ba
3: baba
1: ning dang di i chang hau cha chi go
3: hoi ba
1: asi baba ne
3: Go,
1: 비게디기 바바기 옵션을 잡게 오늘 나오라고 싶어.
3: 뱅게
1: 뱅게 원 뱅게
4: 뱅게. 아이고 빠사니 판도 쇼이비 아담니고.
3: 아씨, 거인오네. 동안 자는 시디. 나는 금세. 빨리 사이나 금세.
4: 이마. 아이디 남자들이 빨리 살아오드래 동안 자면 나 이거 가만히 있다고 돼 이노.

0: ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯒꯨꯟꯗꯤ ꯕꯕꯥ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯆꯤꯟꯕꯤ ꯃꯅꯤ ꯃꯀꯨ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯕꯨ ꯂꯥꯏꯃꯛꯅꯤ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤ ꯏꯪ ꯇꯞꯄꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯕꯕꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯈꯪꯖꯩ ꯕꯕꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯕꯕꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯅꯤ
1: पिमिलागी मसान अब शोई बहुना ब्रो
0: शोई रे
2: बाबा दामचा साक ताई साक सारो रसे
3: आशी दी इशा तो बिगी साक ची याम थोने लोए करे था ला ला ला सारी गाय तो चातों नोरो चिलो ला ला ला चारो चिलो
0: होई बाबा
2: इमा इमा कल हाई मादी कमाई तो तूनो आओ बनी दा सारो है रो बे मा ऐनो वाकन मिफम जथा बनु मिसिदा करिगि नोमि नोइन इंजांग हाबो थोंगि दबो हाय मखोइ ममांग द साबदि फजत्रेबा खांगब्रा कोना सारागि इमागि सारुक तो लोना खामुको लोना
4: होय मा
2: हाय हाय हाय गावनि को गावनि
4: ऐ जंगु हिगे
2: चोर चोर
4: बाबा हाउ ब्रो ऐ सु खगदि थोंग बा हायरबनि दा
3: सावरे इसागि जांग जे हाउरे मतूं सुयाव दीने आई ते बोझ मरूं आता
0: हाय माँ आई तो हाय बो बाबा सुआ
3: हाय माँ
0: मतूं अस मतूं तियाव दे बा
3: अतुनी दे
0: ओं दे बाबा अलू मही ना याँ बा
4: कहीं कहीं जा तुम ये मदा मतूं खर दी लोगे
3: मामा की मचानी ना मामा का चप्पे माने इधर आई बे माँ नंग ने नंग नोए रोको नंग नोए रो है से बाबा जी हाउगल मगे को अदो हाय नाइको नोय नमादु दिए कोन लोन चारन हाय ब्रो नोय नमादु चाब दि पाम जकरम दे दिए मा
0: आइ तो ओके हाउ रे हाउ रे हाउ रे हाउ रे इशिंग न मा हाउ रे
2: बाबा गा दाम सागन थोकरिंग एसिदा इमादो अमक्त को बिरु किगे
4: इमा बाबा गा दाम सागा थोकरे सारु रसिला ओ
2: हाय कन नंगांग नु ने मोय तानी ने बेमा छे छे छे थोंग छे मी उखिनिङा छलु
4: खै मासिनगे
2: आङाङ न तरबनी ने इकाई ने थामसा इचांग दो छे छे हाबथरो ओ
4: छे इमा छे थोंग रसे हाइदा थोंग तनि छे छछछ छलु ब छछछ छलु
2: आ हाय कन्नन गांग नोइ मी नखोइ न बापु फत्त दो चंग कने हाइबा
4: इमा छे मतो मि साउत्रा दो छे सु मतो गि मतो
2: तनि थम थम इमा इमा छाइ दन योट के हे
3: ए 那是我用不了你的锅，哈哈，奴婢爷的孩儿个，啥个子的？

ꯉꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯥꯔꯀꯥꯏꯚꯁ ꯗꯦꯅꯤ, ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯖꯤꯇꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ। ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯥꯔꯀꯥꯏꯚꯁ ꯗꯦꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔꯤ ꯔꯟꯖꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯔꯟꯖꯟ ꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯎꯈꯤ। ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯥꯔꯀꯥꯏꯚꯁ ꯗꯦꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔ ꯔꯟꯖꯟ ꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯔꯤꯁꯥꯔꯁ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯥꯔꯀꯥꯏꯚꯀꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯖꯤꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ। ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯄꯨ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯣꯛꯈꯠꯇꯨꯅ ꯊꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯀꯠꯊꯣꯛꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ। ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯂꯤꯇꯔꯦꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏ ꯀ꯭ꯌꯨ ꯑꯦ ꯁꯤꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜꯒꯤ ꯏꯁꯄꯦꯁꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯞ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯑꯦꯁ ꯑꯥꯏ ꯑꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤ ꯗꯤ ꯌꯨ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯂꯦꯛꯆꯔ ꯔꯨꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯅꯣꯚꯦꯁꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯇꯣꯡꯕ꯭ꯔꯝ ꯇꯦꯁ ꯀꯨꯃꯥꯔ, ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯥꯔ ꯑꯦꯁ ꯑꯩꯁ ꯁꯥꯟꯇꯤꯕꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ꯫ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯆꯍꯤ 12 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯛꯄꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯀꯤꯁꯥꯟ ꯃꯣꯔꯆꯥꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯤꯂꯥ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯛꯁꯣꯞ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯂꯝꯂꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯨꯔꯩꯔꯣꯝꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯁꯦꯜ ꯏꯆꯪ ꯆꯪꯍꯟꯗꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯂꯧꯎ ꯄꯊꯥ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯤ ꯑꯩꯁ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯜꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯗ꯭ꯌꯣꯒ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯤꯌꯨꯁ ꯒꯣꯌꯦꯜꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯖꯤ ꯑꯥꯏ ꯇꯦꯛ ꯐꯪꯂꯕ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯇꯦꯖꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯂꯤꯆꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯂꯦ꯫ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯐꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯦꯖꯄꯨꯔ ꯂꯤꯆꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯤꯞꯃꯦꯟ ꯗꯨꯕꯥꯏꯗ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯁꯤꯔꯤ ꯒꯣꯌꯦꯜꯅ ꯍꯥꯏ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯆꯤꯕꯨ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯌꯣꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯐꯪꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 12 ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ, ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯁꯛꯇꯤ ꯄꯤꯅꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯈꯥꯛꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤ ꯀꯣꯇꯤ 190,000ꯒꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯀꯠꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯁꯣꯛꯊꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯂꯦ꯫ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜꯒꯤ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯂꯦ꯫ ꯁꯤꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯦꯕꯥ, ꯑꯐꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯍꯟꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯙ꯭ꯌ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯏꯟꯗꯣꯔꯗ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯕ꯭ꯔꯤꯛꯁ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5 ꯆꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ 21ꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ, ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯁꯤꯡ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯜ, ꯆꯩꯅꯥ, ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯎꯠ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯖꯨꯟ 13 ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯊꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯒꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯀꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯍꯟꯗꯕ, ꯐꯥꯝꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯅꯧꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ, ꯏꯁꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯀ ꯆꯨꯅꯅ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎ ꯇꯧꯕ, ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯌꯣꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯁꯛꯇꯤ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯂꯧꯃꯤ, ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯀꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯍꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯒꯅꯤ꯫ ꯖꯨꯟ 13ꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯛꯁ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯒ꯭ꯔꯤꯍ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯉꯁꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯦꯟ ꯄꯣꯔꯠ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯄꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯍꯧꯗꯣꯛꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯝꯈꯩ ꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁꯦꯟꯅꯕ, ꯑꯃꯛꯄ ꯂꯩꯍꯟꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯉꯝꯈꯩ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛ ꯂꯥꯟꯁꯤꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛ ꯆꯠꯊꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯔꯤ꯫ ꯒ꯭ꯔꯤꯍ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯥꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯦꯟ ꯄꯣꯔꯠ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯉꯝꯈꯩ ꯂꯝ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁꯦꯟꯅꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕ, ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯨꯅꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃꯅꯤ꯫
केंद्रगी कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाई नरेंद्र मोदी की सरकार की चही तरानी भारत की कोयला खनी सेक्टर चाउन अवनब पुरक्ले फिल्म सिटी हैदराबाद तंगरांग पाव की मिफम वांगांगबद श्री रेड्डी ने हाई भारत हाना अमुक्त ओइखिद्रिबा मवोंग कोयला तन कोटि चाम पुथोप ङम्दना मालिंग अनिसुब ख्वाइदगी चाउब कोयला पुथोप लैबा ओइरे मांग हाई कोयला सेक्टर असिना मि लाख मंगा रोमदा हथेंना अमसुंग मि लाख कुन मंगा रोमदा नाकोइनना थबक पिरि श्री रेड्डी हाई हौकिब जही अनि असिदा मिरैबागतगी कोयला लैबगी चांग हन्थदना लुपा कोटि लिसिंग होम फुरोम कनब ङमले मतिन हाई कोयलाना भारत की इनर्जी सेक्टर की यांगलेन सरुनि मसीना लेबाक असिगी अपुनबा इलेक्ट्रिसिटी पुथोपगी सादा बुद्रानी थोयरोम ओइरी केंद्रगी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्री पीयूष गोयल हाइरी भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री असि लाकादरिब चही मंगादा हौजिक लेरिब असिगी सरुक अनि ओयनब होनरी मसीगीदमक अनौबा इनोवेशन सिंग पुथोपा ग्लोबल पार्टनरशिप हेंगलहनब अमचुंग मालेंगी मफंग कयादा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट सिंग योनब हेंगलहनब होनरी अरोबद मरुब पाव अमो उख्रुल कामजोंग जिला पुंग कुन मरी टोटल सटडाउन चथगीबदगी जिला अनि असिगी हेडक्वार्टर मी पुम ताक ताकले तंगाई फदन चंग पोलम सिंह पुब गारी चनी हमफु ना सेनबगी अकनब सेक्सेल थौरांग लोनना अयु कन्वोय अनि थोकना जिरीबामदगी इम्फालोमद थोरकले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हाई होगी चाही तरनीथ लेबाक नहा सिंह नुपी लौमी शक्ति पीनब सरकार अखाप लेतना होना लाली मध्य प्रदेश की इंदौर इंटरनेशनल ब्रिक्स एग्रीकल्चर कन्फ्रेंस हो पाव लोजरें।

0: ஹலோ ஹலோ ஹலோ குட் ஆஃப்டர்நூன்.
1: ஹலோ
0: ஹலோ கண ஓய் பீரபனோ
1: குஞ்சேஸ்வரி
0: நீ மிதாம் ஹோய் ஹோய் குஞ்சேஸ்வரி ஹபீபக்வா
1: ஹோய்
0: ஹோய் லம் துசு தம்பியோதனா
1: லம் பசோய்தகினி
0: ஹோய் பசோய்சே ஹைதோக்பத லைவ நுங்காய் பகிர கரினோ லம் ஜஹன லோசில் லேவ குஞ்சேஸ்வரிசே
1: லோசன் பனதே மிதாம்
0: ஹோய் ஹோய் ஹோய் கரம்ப வாஃபம் தம்பிகனி ஹைபியோ மசி
1: ये जो कि अखिसे छिरियन से नुंगा आइबंगा कनी नंबना को अदुगा सुम नीला गम बजे खगा हानगी अदि बद खगा नुंगाइब लैब जिंग दो दम छे हापी रो हाय के तौबनी
0: होय होय हायरि ब थरम ग मरी लैना ब सिंग दु दि अखोई मनीमला द सो दुमक से थी थाबिर ओ थारक प मे आमम सो अखोई खुदोल तम दना तहन जकी बसु लैर बनी को
1: होय
0: अदु कुंजेश्वरी से अतो प थरम सिंग द दिसरु या बिब्रो
1: ยาติยาละกันเนี่ยวันพังเดียนะดุมหายเลยไม่ได้ไม่ใช่กุมบะยาปะอ๋อๆอ่าไอ้คุยกี้ตรงงานนะโพสการ์ดกุมบะกี้ใส่คันบะนะตรกันนะไอ้คุยมณีมลากุมบะดิอะดูเตติยาติโหยอะดูกุมบะดะสุสรุปยารักนะปังสิตันจาพังลิงไอ้วารีพังลิงไอ้สิดะไอ้คุยไฮเซอร์บะนี่กุคุณเจสุรี
0: โหยๆไกดอบิรัมบะนะฮุซิกสิบอ
1: จากตุเอมิดาอะตังโพทารัมบะไอ้ตาเนี่ย
0: กะรีกะรีสินพัมดิไปบิริบะฮุซิกเซ
1: ยามนับปะก็จะปะปลำนัดเตรียมเราคุยเกี่ยวกับใครมาเตรียมมุกิโดอาจจะมาทำกิจการท่าไปได้ใครเห็นตัวเราก็จะดีอาจจะมีอันเทอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอ
0: corn gumbasu, adum mayama matane, karamba makalgisu zawa birabano tabi risa.
1: We have habitu yale, do us a house is out, my taking them the blaubito. Adu su karayawi.
0: Hoi hoi. Adu equina. Aikoi kunje shuri sinai yum palaga ngasagi housing se atopa tabak thorom kase paibi de aduga ziki inkol koi bukot pas di paibi ri neba
1: medam ei di yum panjatre
0: o nangpi gani koi koi pau se pau na hong da bagi ne
1: e e kisa chumbo pai di
0: oi adudi
1: adum yam ngan na adum ayna isana ya na ta chi sa lambi ji da ta sara roe na hai ta ne ko
0: hoi hoi
1: Hoi
0: hoi. Ado ekhoi nupi ki oiba thoram ni thamjari ba good afternoon ladies ki thoram se marak ta ekhoi na hek program gamari leina ba na traga nungai nungai te na chingba thoram sing gamari leina ba wakat sing thagat wai sing adumak lo sin jai kwa adumak pu ekhoi na kunje chori ga wari saba fangjari ngai si da hai ba tare ne kwa ekhoi gi isagi oiba hozi phawbagi punsi gi khongchat si da awa nungai do Kazikang share to Biromune to Sumayam Punakaminanab.
1: Awanung I Haragadi, Madame Punsije, Kayani, Pesanucha, Tanalupa, Wadibuka, Aduba Katna Nungai, when I

0: हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून लेडीज के थोरम ने। हेलो
1: गुड आफ्टरनून मैडम,
0: गुड आफ्टरनून कना ओई बिरा बनो
1: आई चिंगनुम खोकतगी सावित्री।
0: चिंगनुम खोकतगी सावित्री को ममांग द सु थेंग ने जखरब माले सावित्री से
1: हदकती करको इरे
0: होय होय करी गरम बवाफम थबिगनी।
1: ओ अलीना सुम हगोनिंग बदी सुम इमुंग मनुंगी सुम आइगी दि इजान पाम ग नुपी उंग पुक्ते बा अदिबे इमे इमुंग नुपी दो सुम आइना सुम नुची जे बदो मारी वइन वारी लि रगे न तब जर
0: कने या या या कोइ नुपी गे ओइना थमजरी बा थोरम निना नुपी गे अवा नुंगाई अदुगे होजिक साबित्री नगा हाइबी बा इमुंग नुपी बु थागत निंग बगी वाफम ग थमनिंग इसे याम नाय कोइ इंटरम न ओकचेरी बनी लिबियो लिबियो
1: माना जो इमा अपोको दोंना इजे खल्ले आइना हाइब इल्ली दो आइना सुम इसानिंग वनगी नुक्सी बगे इमा वो नुपी की नुक्सी बगे इसा आनी जे खंग दे लोई नुक्सी बगे आनी मत से
0: होई होई
1: इमा नुपी जो आइने है पोक्चा बगे इसानिंग वन दोंना नुक्सी जे
0: बा
1: आइना हाइब जी हमने इल्ले मादी
0: होई होई
1: अदा तरिंता आइना हाइब की उपोत ही तोकते अदुने आइना हुदिकान की mau jengje mani yang gak mau gak, amarun tu sumpa apa tu lagi haba.
0: Hoi kari gumba kan dah suhe, dungai tapi tu dok meyamam tu ini.
1: Aiy dihek pokde kita tu na ningje ba, ada. Tangi kunci yang jadi sumpa apa tu jam dungai jengje.
0: Takat ceri, takat ceri.
1: Nah, tu itu wujud medam tu.
0: Hoi hoi, adomgi. Thagat wahai amadi adomna pibirakpa mangol gi pauzel haiza batare sisulo sinjari aduga sabitri gi imungi oiba nungai ba mapau ga tambase akhoi lamdam sida leiri ba mani mamo oiba mayam sing sinasu masina inot ama hapiraga nasidagi loina mak mane mamo dai mani mamo mayam sing sen nungai na nung sinana loina mang leiba oira sanu haina thamjage ko
1: madam am tanga haije
0: haibio haibio
1: tapi ni mesti saya juga, cum, ini cum phone ni, apa pengbukaan dia, kita jaga, ada bukan ni, ba. Amu pengbukaan dia, ba.
0: Oh, phone in program, aku lagi, tapi ni mesti saya sih.
1: Oh. Aduh, apa ni? Tapi apa yang nungai ni, dua je, ini cum sago nazar lah, cum lagi je, ba.
0: Oh, ini macam ko ini sago nabi, aku lagi di, thoram tapi riba mayam selai, jaga di sandok ceru bagi wahan tuk sulai roy dori bani ko. Hoi, ya bira berosina.
1: Oh, ya jadi meda.
0: Hoi hoi.
1: Makan nungai berziki lipuk lagi.
0: Hoi hoi. Yang nungai zai, aku ini dari bibirak ba, ya ifa pauzel. Matam ku ina sang na imung manung nungsi nana layba. Oh, shnu hai besi imung nupi dasu demak pau dam biu ko sabitri.
1: Oh, tunggu kita.
0: Hoi hoi. Thagat jadi sabitri kol dobiak.
1: Thagat jadi meda.

0: हेलो हेलो हेलो हेलो गुड आफ्टरनून हई कना हई बीरबनो संध्या रानी लमदो मुक हाइबियुबा सेक्ता दगी संध्या रानी तराम नोक चेरी गसी गुड आफ्टरनून लेडीज त करम बफम थंबिगनी
1: आ ममांग कोलर सिंगा मनिंग ममोगी वारी आ तो इन तो कोमिदा अपा बफ पत बहा दे माग माग मखम पत बले दे मौजु मखाना वखन दा बताय मने मुजे कुतिन खाना जी मदा तो आईजी
0: ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯅ ꯃꯧꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯏꯆꯥ ꯅꯤꯉꯣꯟꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯄꯨꯕꯤꯒꯦꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯎꯅꯤꯡꯉꯣ ꯁꯤꯅꯔꯣ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯟꯗ꯭ꯌꯥꯔꯥꯅꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯥꯊꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯍꯧꯁꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯏꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯣꯝꯅꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯊꯝꯕꯤꯁꯤꯅꯦ
1: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤꯕꯨ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯎꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯅꯨꯄꯤ ꯆꯥꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯒꯦ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯏꯅꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥꯟꯒ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯌꯨꯝꯒ ꯄꯨꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯅꯤ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯎꯏ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯅꯁꯨ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯊꯥꯖꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯥꯏꯅ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯊꯥꯖꯕꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯌꯥꯍꯧꯕꯗꯒꯤꯅ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯕꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯅꯨꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯅꯨꯄꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯧꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯦꯝꯄꯣꯛꯅꯈꯛ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯥꯊꯩꯗꯅ ꯊꯝꯃꯝꯃꯒꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯅꯨꯄꯤꯕꯨꯁꯨ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯩꯊꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯄꯣꯛꯁꯦ ꯂꯥꯏꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯜꯂꯛꯑꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯐꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯁꯟꯗ꯭ꯌꯥꯔꯥꯅꯤꯀꯣ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯍꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ꯭ꯔꯣ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ

0: हेलो
1: हेलो मैम।
0: हेलो, गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून मैम।
0: होय कना ओय बिरबनो
1: डबल।

शुक्रिया कुंजम निर्मला. नमस्कार दोस्तों, ये है आकाशवाणी इम्फाल केंद्र का FM संगाई चैनल 103.5 मेगाहर्ट्ज पर. स्वागत करती हूँ आज के गीतमाला कार्यक्रम में आपकी रेडियो दोस्त थुकचोम गीता.

दोस्तों आज है मंगलवार और हम आपको सुनवाएंगे आज फिल्म संगीत। तो आज हम सुनवा रहे हैं जीते हैं शान से फिल्म का एक बहुत ही लोकप्रिय और सदाबहार गीत है। ये गाना अपने मजेदार बोल और मिथुन चक्रवर्ती की लाल जैकेट के लिए बेहद मशहूर हुआ था उस समय। तो इस गीत में आवाज़ें दी हैं अनु मलिक और कविता कृष्णमूर्ति ने। गीतकार है इंदिवर और संगीतकार है अनु मलिक।

दोस्तों आप सुनते हैं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और गायिका हेमा सरदेसाई की आवाज़ों में ये गीत है फिल्म जोश से। इस गीत के बोल लिखे हैं नितिन रायकवार ने और धुन तैयार किया है अनु मलिक ने।

दोस्तों अब सुनते हैं अनु मलिक के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म हसीना मान जाएगी से ये गीत। इस गीत में आवाज़ें दी हैं सोनू निगम, सुदेश भोसले और अलका याग्निक ने। गीतकार है नितिन रेकवार। सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना संगीतकार आनंद राज आनंद के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म जिस देश में गंगा रहती है। इस गीत में आवाज़ें दी हैं बाली ब्रह्म भट्ट और सुनिधि चौहान ने। गीतकार थे प्रवीण भरद्वाज। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी फालकेंद्र के FM संगाई चैनल पर फिल्म संगीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब सुनते हैं हेलो ब्रदर फिल्म से ये गीत। इस गीत में आवाज़ें दी हैं सलमान खान और अलका याग्निक ने। गीतकार है सुधाकर शर्मा और संगीतकार है हिमेश रेशमिया। तो सुनते हैं ये गीत।
1: देख राजा, ये मटकी एक फटकी में तोड़ता है।

0: दोस्तों, फिल्म संगीत कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर अब सुनते हैं आमिर खान और अलका याग्निक के युगल स्वर में गुलाम फिल्म से ये गीत। बोल नितिन रायकवर के हैं और संगीत अनु मलिक का।
1: ए, क्या बोलती तू

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। दोपहर 2:30 बजे फिर आपसे कंगला चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक अपनी रेडियो दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अरे इतना तो क्यों सोचे, मैं आगे तू पीछे, बस अब निकलते और क्या।

0: 이사의 세타한 자기부가 로인한 땅가가 쓰기 오이는디 아리버 풀마마 디마타미 사이싱란 톡자바 마당하시다 루신자리 아카스바니 임팔 하우직 마니푸리다 마로이바 파우 따비라세
1: 아카스바니 임팔 하우직 파우기 마로이바 파우 मुख्यमंत्री युमनांग खेमचा ने पीएम जनमान अमसुंग दिए जगुआगी मखादा चिंगी जिला सिंग द सिजिन न मोबाइल मेडिकल यूनिट रा हम दोय नासी लमथाक्रे लमफेल पातले ब डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज त पांग तो पथरम अमदा मोबाइल मेडिकल यूनिट सिंग अदु लमथाकी बने नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी ये जही की जनरल मीटिंग सिलोंग द पांग तोक्रे मदुदा एनपीपी मणिपुर स्टेट यूनिट याउना अवांग नपों के राज्य पुनम अमसुंग लेबाकी अते राज्य तरा मरी म्यूचिंग चरुक याकी एनपीपी मणिपुर की प्रेसिडेंट लोरहो एस फोजेन मीटिंग अदुदा मणिपुर यूनिट की जही की रिपोर्ट पुथोकी संगीत नाटक अकादमी न्यू दिल्ली की कंस्टिट्यूएंट यूनिट अम ओइरिब जेन मणिपुर डांस अकादमी डायरेक्टर बिलास पुक्रम बमना ngarang लोक भवन डांस अकादमी असिगी चेयरमैन छु ओइरिब राज्यपाल अजय कुमार भलाग उनकरे उनबदु द अकादमी असिगी मरी लेने वफंग कया अमसुंग हौजिक पाइखलिब थाबक सिंगी मतांग द खनकी मणिपुर दगी स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मालिक अमसुंग बीएसए की कांस्टेबल लेखिदब दीपक सिंगा खमद बिर सक्राम दिमाथ सुब पेरा स्पेशल फोर्स की मेजर लाइसांग तेम दीपक सिंह अमसुंग ओम सुब असम राइफल्स की राइफलमैन मंगलेम सांग वाइफेद सौरिया चक्र पीरपद मणिपुर की राज्यपाल अजय कुमार भला नुब पोंदोलीना थाना फबगी मना सिंह फंगलपद बीजेपी मणिपुर की प्रेसीडेंट अधिकारी मयूम सरदा देवी नुब पोंदोली ब्रिक्स एग्रीकल्चर कन्फ्रेंस मध्य प्रदेश की इंदौर ngasidagi haukre awang pathak ki mipam asida brazil indonesia china iran south africa uae amasung atei member leibak sing gi mihut kangbu sing charuk yari mipam asida leibak kunma thagi la using mantri makok thongba official sing amasung akai akang ai sing chu charuk yari फ्रीडम फाइटर भगवान बिरसा मुंडा लिखिदी कुमोदा उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह लुसी इकाई कुमन उली पाउ लुजरें

0: रेडियो तो पाव तारे टीवी तो तारे खबर पारे पाव से इमान दमान रे तौरी से कोविड की पाव गाता होती है थोड़ू रसो आयु वॉकिंग चट पद मंगाए कोरोना की वरी गाता मालीम सिद कोविड 19 नईरक लिवसी अस कर्म कांड का समय ले खी गया था बा खंगले तो कोटा उड़ी चाहे
1: यार वो इनसे एक ही ने नंगी तो तुम तो जोगा जा
2: इनसे नहीं तो
1: तानिंगे
0: यार

0: 싸우기도 눈 아이 바이브도 마시라 마마 나 싸는 피는 거리수 아랜드라 바마 땀시다디 낭데 눈 아이 바시 아오보 팡드레 낭부 아먹다디 할라코가 와 나시디 나 싸는 피는 거리수 아랜드레 와리 바이브 낭 땀망아이레네 싸우기톤
1: 바바 아 그이다 우리 갑도 내려 봐디
0: 아 갑분 내다 나시기 누가 이러면 맞담세 나마디 야오고 방리다 고이나 칼로보다 누가 이따다 이빠는 숨 졸란만이다
1: 뭐이다소
2: 그이다 우리
1: 에코이 비말라 이
2: 아
1: 바바가 가리가리 와리 사나리노 아무것도 다루키기
2: 마시나 어쨌다 니가 럭트시 이만이시오 이씨
1: 바바 चखब इमागी नुआई तो वखल खंदना लैर नोबा इमा सो मफम दिदा नुआई ने लयुरगे ने चखब नेबा
0: नमादो लैरम लेन द नुआई ने दिलेरम बनी कोन पिमसा
1: नुआई ने लयुरगे ना एखोय मयाम थादो दन चखरीब न त्रो
0: फरे फरे नमानो नुआई ने लेरम बनी हायर दि फरे अदु गुने ने पिमसा
1: बाबा
0: नमादो नो मत नुआई बाहे बदो फमजे खिद्रमनि नमान म खोंकोन खिबदसु नहीं मैं याम की होना बता लोग मत तिंखल अगर चचा बब फंदो बता की ने अनम बनसु माय मुखांग दो कौन की बने
1: बाबा अस पुम्ना मत तो खलूर नोमी बाबा नंग सिद्धि तली
0: खलर खलर हुए न खले समय तो गम दबा आ पनसु कोई रे लोग मत काओ गे हाय बंग गम देने इपान
1: बाबा
0: इपासु नमागे मनाता पुसर निंगे दाना पिमसा
1: बाबा
0: इन सक्रब दी नोई को आईशु वार रोए आईशु नमागे खनबदो खलर रोए दाना
1: अस बाबा अदुम नंग बिही बकरी की दो इखोई पुम नमक नोंग मदी सोई दाना ताई बंग पान था दोग तुने चक्का दा बंग हाकनी आना कौन की वातनी बाबा हिंग निंगे इसीदा नुसी दाना नुंग आयने हिंग ना बहुत ना बना पत्रो
0: होई ने इपा नमावु अमु अन्न कलरो कोनो पिमसा कलरो
1: करी ये कलो जो इनो पापा हेंजिन न खंबी का नो हज़ाब की वाने
0: आ नंबु शिक्षित थले इब्रा
1: आ नशों सिंग द थलु जो न हाय का दबसु मागे मागे मताऊ सिंग बजो द हाय बगंग अम्दे द पापा
0: हाय रुन हाय रुन मागे मागे मताऊ दो तब जस्नु इचासित आ नंग सुने थिंदो का थिंजिन का सिद्ध उन तो नवार रीगन
1: कहीं तो बगी वहाँ तो इन्हों पापा हक जान साजेल वो इन्हें लाग पापू अस साइकल से तोंग बदेगी ने खूना बगल ओए ने फादोक रे
0: आ पाई पाई पाई नंग ना वो ना सान लुंगाई जर बदी याम पाई
1: पापा तासो कोई नम कोई दी पापा की नाता अमुक तो चंगल ड्रो
0: कोई ये वादो इपादा मुहना पलक मसक्षिं दो इपाई यंगिंदे ऐ न सीर बसो मकोई यावला कनुको
1: पापा
0: नमागिसु नंगना अंगम बखर पुथोकरे दुना सोन खरे दना अदु मायना इपागिसु ने पिक्तक ना दुम सोलो कलो करीगुंबा

दबी बसी आकाशवाणी फनी संगागे मधी कंगला चैनल अनिम दबी बसी की मफमदा नसी नुमिदांग मधी हयेंगे चैनल सिद थमजरीबा मरु ओइबो थोरम खरदंग समलबना निंगसिंचरी चलीबो थोरम परे नसी की नुमिदांग पुंग करी कमिटी नि पुमंगा था सिगी सैत हंजकनी था सिगी सैसकपा कुंद्रापम जीवन सिंह सैरेंग लोंजम तोंबी पुथोपना हाइक्रूजम देवेंद्र पुंग निपाल ताब मतमदा मणिपुर ड्रामाटिक यूनियन गे रेडियो लीला इमा गे मपुरोइबा अरोइब तंकत हंजकनी हयेंग अयुकि पुंग तरेट खोंजेलना सोंद थमजरी माइ पाकलब लोंमी थोरम सिदा नुबिलै थाबद माइ पाकलब लोंमी खुरखुल दलैबा फुरी छबम रोजित को उनदुरु वरी साबा उनबिगतबा एम एम सनायाई पुथोपना रायचंद सिंह थाम

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भारत तुंग दमसेक मंगल थोकपा भारत नमो एन गेह बतार बदे मिरोन बिनुपी सिंगबु मसामउ फन थमलब मतमदा ओहेन मंगंगने वखलो नसिग लोइनना इकाई खुम नजरी ब भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असान मिगे ग मंग लोइनना प्रधानमंत्री सुरक्षित मंत्री बा अभियान कैंपेन सथदुन लागले हौजिक फौबद मिरोन बी क्रोर तरेन मखाई की मथकता लेमन टेस्ट कया तौदुना कानब कया पीख्रे ई अमदि यूरिन टेस्ट अल्ट्रासाउंड संग दबयाद्र बहिदा लाथक सिंह था खुदिंग तांग मापन द मनांग नक पदलै ब सरकार गि हेल्थ सेंटर द सतपीदुना पिजरी बु खुदोंसा ब सिंह सि लोबी पाउजेन जरीबा डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज नेशनल हेल्थ मिशन मणिपुर
4: कुमजा लिसिंग अनी मापन द मणिपुर के चैथाब ओइखिबा अमसुंग सरांगथेम सागैगे युमदारोल पुया अमदि सागैगे अपोकप संगलेन लिंगबदा अचौब थौदांग लौबिरमबा कक्चिंग खुनौ तंपाक युम एलपी स्कूल लैकाइदगे सरांगथेम खोमदोन।

0: Mura Chigong Trophy Village Open Football Tournament ki ngasi sana ki ba match ta Drosa inna SYDA bu panjil manga ahum da thoikre dijamni
1: aroibada maroiba paumuk mamang thagi tara hum doidigi phasin duna thamlakhi ba kuki gi miyoi tara mari ngasi thado khrai mukhyamantri yumnam khemsa nangasi singi jila singde sejina na ba mobile medical unit tara hum doilam thakhrai मणिपुर की राज्यसभा सीट की दमक बीजेपी की अधिकारी मयूम सरदा देवी की मिरेप से याख रहे नसी मिरेप से पिसन बिगे अरोयब नुमिता अतोप मिरेप अमता मिरेप से पिसे लगत रहे मालेम की अकोई भी की फिवम कनब नुमि थोरम ग मरी लेने ना था मसुम न सथा गदब उ था बगी थोरम बिष्णुपुर जिला दा नसी हुदो खरे मसुम ब्रिक्स एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश के इंदौर दा नसी देगी हुखरे पाउल इजरे

बसंत की नुंगालम दाई फिल्म सिदे की मुलो खचरी सदानंद मदी रोशी बिना की पुनम खंजेल दा तेज खेत्री ना सेरेंग बा आर के जी तेना सेरेंग बी से इसे सिबु खुदा बिदी बा मरुप ना उलो साजोर दिगी सना हल राहुल लेसेम बा लुनना इसे सी रेडियो ताबी दिबा पुनम मक्का तामिन जगे सोइदना थाबी रकनी खन्ना वान नगाई जरी सुमे बिदक पनी सही खुदल तौजरे तामिन रसी

वाह कितना खूबसूरत गीत और यह गीत अपने साथ कुछ यादें भी ले आया। दोस्तों कभी आपने गौर किया है कि हम दुनिया से उतने ज्यादा नाराज नहीं होते जितना अपने किसी खास इंसान से। सोचा है आपने कभी क्यों? क्योंकि हमें उनसे उम्मीदें ज्यादा होती हैं। जब वो बात कम करें या हमारी बात को समझे नहीं या बस थोड़ा सा बदल जाए, दिल कहता है कि तुम ऐसे कैसे हो गए। लेकिन प्यार की सबसे प्यारी बात तो यही है कि नाराजगी चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर रिश्ता सच्चा है तो एक मुस्कान, एक छोटी सी कोशिश सब कुछ ठीक कर देती है। अगर आज आप भी अपने किसी से नाराज हैं तो बस इतना याद रखिए कि

दोस्तों रात जैसे जैसे गहरी होती जाती है दिल भी थोड़ा ज्यादा ईमानदार हो जा रहा है। दिन में जिन बातों को हम इग्नोर कर देते हैं रात उन्हें धीरे से हमारे सामने रख देती है। कभी किसी का ठीक हूं भी झूठ लगता है और कभी किसी की खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। मोहब्बत में प्यार में थोड़ा सा अपसेट होना गलत नहीं है, गलत तब होता है जब हम बोलना छोड़ देते हैं, क्योंकि रिश्ते खामोशी से नहीं समझने से चलते हैं। अगर आज आपका कोई आपसे नाराज है शायद उसे आपकी सफाई नहीं बल्कि आपका साथ चाहिए, और अगर आप नाराज हैं तो कभी कभी बस ये कहना काफी होता है, मुझे फर्क पड़ता है, तभी तो तुम्हारी बात मुझे बुरी लगी।

दोस्तों कभी कभी ना हम बस ये चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बातें बिना कहे समझ जाए, लेकिन मोहब्बत में प्यार में अंडरस्टैंडिंग भी धीरे धीरे बनती है। अगर आज कोई अपना आपसे दूर लग रहा है तो शायद एक छोटी सी कोशिश, एक ईमानदार बातचीत सब कुछ बदल सकती है, क्योंकि रिश्ते जीतने के लिए नहीं बल्कि निभाने के लिए होते हैं। और इसी प्यारे एहसास के साथ कार्यक्रम का अगला गीत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के

दूसरी ले। जब कोई कहे ठीक है गलती मेरी नहीं थी शायद, लेकिन तुम उदास हो तो चलो बात करते हैं। यही तो प्यार है, जहां जीतना जरूरी नहीं बल्कि साथ रहना जरूरी होता है। कभी एक छोटा सा चाय का प्याला और एक छोटी सी मुस्कान दिलों के सारे गिले शिकवे दूर कर देते हैं। अगर कोई आपका अपना है और उसके लिए थोड़ा सा झुक जाना कमजोरी नहीं बल्कि रिश्ते को इम्पोर्टेंस देना है।

दोस्तों अगर आज आप किसी से नाराज हैं तो सोने से पहले एक बात जरूर सोचिएगा कि क्या ये नाराजगी उस रिश्ते से बड़ी है क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में बार बार नहीं मिलते और कुछ बातें वक्त के साथ कहने में देर हो जाती है अगर प्यार सच्चा है तो बात कीजिए समझाइए और कभी कभी बिना वजह भी किसी को मना लीजिए क्योंकि रिश्ते परफेक्ट नहीं होते लेकिन उन्हें निभाने वाले लोग उन्हें और खूबसूरत बना देते हैं इसी प्यारी सी बात के साथ आज का कार्यक्रम के अगले गीत के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा दिल में प्यार रखिए अगर कोई आपसे नाराज है तो उसे मना दीजिए और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं। इसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताजा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
1: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
3: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's foreign policy is now in sync with its core national goals. The minister said that foreign policy and diplomacy have got integrated with priorities of the government focusing on social security and national development. Dr. Jaishankar made these remarks in an interview given to DD News. He said that national security in the present time is not just about protecting the borders. It includes security in terms of economy, energy, health, fertilizer and cyber strength. Dr. Jaishankar said that India is safeguarding its deep strategic and economic interests in the Gulf region while also maintaining its independent ties with Iran, the United States and Israel. Prime Minister Narendra Modi held a telephonic conversation this afternoon with the Emir of Kuwait, Sheikh Mashal Al Ahmed Al Jaber Al Sabah. The two leaders exchanged views on the evolving security situation in West Asia. The Prime Minister expressed deep concern over the escalation of tensions and reaffirmed India's strong condemnation of attacks on Kuwait's sovereignty and territorial integrity. He reiterated the call for de-escalation, dialogue and diplomacy for earliest restoration of peace and stability. Mr. Modi thanked Amir of Kuwait for his personal attention to the continued well-being and the safety of the large Indian community in Kuwait. World leaders have congratulated Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest-serving elected Prime Minister of the country. They paid tribute to Prime Minister's transformative governance, his advocacy for the Global South, and his vision of an inclusive and economically dynamic India. President of Sri Lanka, Anurag Kumara Dissanayake, in a letter said that the milestone is a testament not only to Mr. Modi's years in office, but also to the trust and confidence that the people of the world's largest democracy have repeatedly placed in his leadership. Prime Minister of Papua New Guinea, James Marape, in his personal video message, described Prime Minister Modi as a role model and an example of leadership. Further, Prime Minister of Trinidad and Tobago, Kamala Prasad Bisesar, noted that under the leadership of Prime Minister Modi, India has evolved as a leading voice on global matters. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the Land Port Management System, LPMS Vinimay, in New Delhi, marking a major step towards digitizing and streamlining cargo processing and passenger movement across India's land borders. Addressing the gathering, Mr. Shah said the initiative reflects the government's commitment towards building a modern, technology-driven border management system. He said the platform is aligned with the vision of Vikasit Bharat 2047 and will strengthen trade facilitation, connectivity and national security. And with that, we end this news bulletin.

0: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं पत्रकार शिशिर सिन्हा।
1: नमस्कार। 26 मई 2014 नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ सत्ता संभाली। तब से लेकर 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में देश की जनता ने दो बार और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान हमने कई परिस्थितियां बहुत ही कठिन देखी। कोविड का दौर था, फिर हमारा रूस और यूक्रेन की लड़ाई का भी असर देखने को मिला और उसके बाद अब पश्चिम एशिया का संकट। लेकिन इन सब के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 7% या उससे ज्यादा की दर से विकास करती रही। कैसे संभव हुआ? क्या कुछ रही कहानी? आगे क्या कुछ हो सकता है? इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रेलवे, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार
1: सर। 12 वर्षों में आर्थिक जो परिस्थितियां रही, कई चुनौतियां भी थी, कई कठिनाइयां भी थी, लेकिन 7% या उससे ज्यादा की विकास दर को हम हासिल कर पाए। किस तरह से नीतियों ने इसमें मदद की?
2: इन 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की

0: व्यवस्था को बहुत ही एक मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। हम अगर आज से 12 वर्ष पहले 2014 में जाएं, 2014 में हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ऐसी अजब परिस्थिति में था कि सारी दुनिया में चिंता थी कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में गिनी जाने लगी थी। बैंक्स के एनपीएस बहुत हाई थे, बैंकों की बैलेंस शीट्स एकदम प्रैक्टिकली फिनिश होने के कगार पे थी, कौन सा बैंक कब इम्प्लोड हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां थी। आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बैंक्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में उनके एनपीएस कम करने का प्रोसेस चालू किया, कम से कम करीब 2,50,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइज किया बैंक्स की बैलेंस शीट्स को। बैंक्स को प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में लेके आए, जो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, एनपीएस लोएस्ट लेवल पे है। उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू किया, फिर आया कोविड। कोविड का शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था, सारी दुनिया ने झेला, भारत ने उस शॉक के दौरान भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल स्टार्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल के कारण जो पहले करीब करीब $30 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट होता था, आज $130 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है देश में। इन्वेस्टमेंट जाता है फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रा में, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। आज हम देखें, चाहे कोई भी सेक्टर हम लें, एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ द एयरपोर्ट्स डबल हो गए, हाईवेज 58,000 किलोमीटर्स बने, नई रेलवे ट्रैक्स 36,000 किलोमीटर्स बनी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% कंप्लीट हुआ। कंपेयर करें यूके से तो मेरे ख्याल से less than 50% है। कई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई, उसका देश में एक प्रभाव पड़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों की सुविधाएं बढ़ी, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रो करने में मदद मिली। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक फोकस दिया इंक्लूसिव ग्रोथ। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारों में से एक विचार है अंत्योदय का विचार। इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से इस पे ध्यान दिया, और जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो जनधन अकाउंट हो, महिलाओं को सम्मान देने के अधिकार के साथ जो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हो, पक्के घरों का निर्माण हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का भागीरथी संकल्प हो, ये ऐसे बड़े बड़े काम हाथ में लिए और उनको डिलीवर सक्सेसफुली किया कि सबसे बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का पूरे विश्व में उदाहरण है अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और इनोवेशन पे फोकस किया और बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। तो इस तरह की वेल थॉट थ्रू स्ट्रेटजी के कारण आज भारत 6-8% के ग्रोथ ब्रैकेट में कंसिस्टेंटली रहेगा,
1: और अब जो हम कहते थे कि फ्रेजाइल 5 में है, अब वो कहीं पीछे रह गया है। क्योंकि आप रेलवे का कार्यभार काफी समय से संभाल रहे हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में करीब 56 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 2,38,000 करोड़ रुपए का निवेश है। हम कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो 3 या 4 रुपए तक उसका फायदा देखने को मिलता है। रेलवे की परियोजनाओं से जो बदलाव हुआ है उसे आप किस तरीके से परिभाषित कर दें?
0: बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अगर आप 2014 से पहले देखें तो एक साल में 700-800 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, आज 6,000-7,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन साल का करके करीब करीब पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 99.4% इलेक्ट्रिफाई कर चुके हैं। 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स को अपग्रेड किया, जो पुरानी पटरियां थी, हालत बहुत खराब थी, स्लीपर्स टूटे हुए रहते थे, उन सबको रिप्लेस करके करीब 70,000 किलोमीटर को रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया। 36,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, 1,300 स्टेशन का पुनर्निर्माण, नव निर्माण हो रहा है। 1,300 स्टेशन में से करीब करीब 250 स्टेशन कम्प्लीट हो चुके हैं, इस साल के अंत तक 500 स्टेशन कम्प्लीट हो जाएंगे। 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण एक वर्ष में करना, मैंने स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क है 5,000 किलोमीटर का, पूरा स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर का रेलवे नेटवर्क एक साल में ऐड करना, कई वर्षों पुराने जो प्रोजेक्ट्स पड़े थे जिनको माने प्रधानमंत्री जी का जो प्रगति का मैकेनिज्म है, जिसमें हर महीने वो जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए होते हैं देश भर में वो उन पे ध्यान देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट उन सबके साथ मिलके, तो प्रगति मैकेनिज्म के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे आए। ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आया। कई प्रोजेक्ट जैसे ये चिनाब का ब्रिज अगर आप देखते हैं, तो चिनाब के ब्रिज को तो लोगों ने एक तरीके से राइट ऑफ ही कर दिया था कि ये बन ही नहीं सकता, और बारामूला से श्रीनगर तक ही रेलवे लाइन का और जम्मू से कटरा तक ही रेलवे लाइन को करके एक तरीके से अबैंडन सा ही कर दिया था इस प्रोजेक्ट को, प्रधानमंत्री जी ने इसको कम्प्लीट किया।
1: सर, हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो दुनिया भर में एक नीति अपनाई जाती है, उसको हम लोग ट्रिपल पी कहते हैं, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हमने आपके कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा कि जब भी आप किसी परियोजना का ऐलान करते हैं तो आप प्लैनेट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी जोर देते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब गवर्नमेंट ने भी जो है ट्रिपल पी को पीपल, प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूले में बदल दिया है?
0: ये आपने बहुत अच्छा नाम दिया, जरा वापस बताएं क्या कहा आपने?
1: पीपल प्लैनेट और प्रोडक्ट।

0: प्रोडक्टिविटी, बहुत अच्छा नाम दिया. जनरली पीपीपी मैंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपने इसे अच्छा नाम दिया है. डेफिनेटली यस. देखिए रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95% लेस है कंपेयर टू द हाईवे सेक्टर. इसलिए बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हाईवे से शिफ्ट करके रेलवे की तरफ किया है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो. बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट का फोकस, जो आपने कहा, प्लैनेट फ्रेंडली कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में किया है. और भारत में भी इसका बेनिफिट भी साफ दिखाई देता है. हमारे प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया, उसका रिजल्ट आज दिखाई देता है. आज वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो बहुत सारा मिटिगेशन उसका रेलवे के कारण हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड है रेलवे पूरी, और इलेक्ट्रिसिटी पूरी भारत में हम स्वयं प्रोड्यूस करते ही हैं, आत्मनिर्भर है उसमें पूरी तरह से. तो चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो या पीपल ट्रांसपोर्टेशन हो, वी आर एबल टू डू इफेक्टिवली विद इलेक्ट्रिफाइड रेलवे.
1: सर, चूंकि आपके पास एक मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें अगर मैं एक, वैसे तो हर उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा है, सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए जो उपलब्धि हासिल हुई है, उससे किस तरह का बदलाव आप, चूंकि कहते हैं कि वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री के लिए उसमें सपोर्ट जरूरी होता है, वहां पर प्रगति को आप किस तरीके से मापते हैं?
0: सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, और 1960 से भारत में प्रयास चल रहा था, 1962 से भारत में प्रयास चल रहा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने का. प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सबने प्रयास किए. आखिर सफलता मिली मोदी जी को. प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशंस लेने चालू किए थे, उनका बहुत स्पष्ट था कि हमें इकोसिस्टम पूरा बनाना है. और प्रधानमंत्री जी का ये भी बहुत स्पष्ट था कि हमें 20 साल का सोचना है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है. तीसरा, उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान रखना कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रहे. ये तीन चीजें उन्होंने मूल रूप से हमको गाइडेंस दी थी. इसीलिए सेमीकंडक्टर मिशन जब चालू किया, इकोसिस्टम पे फोकस दिया, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, ये सब के सब इसमें इंडस्ट्री के जितने इकोसिस्टम प्लेयर्स है वो ध्यान से आए. सेकेंड, टैलेंट पे बहुत फोकस किया. टैलेंट में 324 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मोस्ट मॉडर्न डिजाइन टूल्स में, सेमीकंडक्टर की डिजाइन टूल्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है. ये इसका उदाहरण है आपके सामने. देखो, सिलचर, चेंबूर, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुर, जम्मू, जालंधर, रोपड़, धनबाद, राउरकेला, मेघालय, जम्मू, कैलिकट, पूरे देश भर के स्टूडेंट्स के डिजाइन की हुई है चिप्स. ये चिप्स स्टूडेंट के डिजाइन की हुई, स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन की हुई चिप्स को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया, और स्टूडेंट्स ने उनको वापस बोर्ड में टेस्ट करके, सर्किट में टेस्ट करके उसका यूज भी किया. हाल ही में डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे लीडर्स जब बैठे थे, उनको पूछा दुनिया भर में कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जहां पे कैडेंस, सिनॉप्सिस जैसे टूल्स को यूज, स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हमने चिप डिजाइन की और मैन्युफैक्चर की. 20 से ज्यादा नहीं गिन पाए.
1: तो अब अगले, अगर मैं 2 वर्ष में कहूं, तो सेमीकंडक्टर में भारत की स्थिति आप कहां देखते हैं?
0: बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया है विद इन 4 ईयर्स. जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड चिप्स हमारी, ये माइक्रोन के प्लांट से प्रोड्यूस की हुई, ये केन्स के प्लांट से, 28 फरवरी और ये 31 मार्च, ये माने प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे ये दोनों प्लांट्स. तो मात्र 4 वर्षों में 12 प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना, डिजाइन का इकोसिस्टम बनना, टैलेंट का पूरा पाइपलाइन रेडी होना. और अगला जो सेमीकंडक्टर मिशन होगा, इसमें हमारा फोकस रहेगा डिजाइन को नंबर 1 प्रायोरिटी देना, मशीन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, और फैब और ATMP यूनिट्स और आएंगे. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह का एफर्ट अभी लगा है और जो सक्सेस अभी तक मिली है, उससे लगता है कि सारी दुनिया भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखती है.
1: सर, एक चीज हमने और भी देखा कि जो PLI इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपने किया, और उसका एक सबसे ज्यादा बड़ा फायदा हमें मोबाइल हेडसेट के मामले में देखने को मिला. एक ऐसा भी दौर था कि जब भारत में हर मोबाइल फोन बड़ी तादाद जो है वो इम्पोर्टेड होता था या मेड इन कहीं और होता था. अब हम मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया की बात करें, तो ये जो PLI स्कीम है, ये मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक के मामले में किस तरीके से योगदान किया, और वहां पर हम आगे का सफर कैसे देख रहे हैं?
0: बहुत फायदा हुआ. सबसे पहले तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू की, फिर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई. और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रिसीजन का काम होता है. ये एक क्लासिक एग्जांपल है, आप इसको देखें अगर जी, तो आपको ये एक फुल स्टील का ब्लॉक दिखेगा, राइट, तो कोई कहीं कट या कुछ नहीं दिखेगा. ये एक्चुअली इतना प्रिसीजन का मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्चुअल में इतने ज्यादा इसमें कट्स लगे हुए थे इसमें, राइट, इतना प्रिसीजन का काम था. जो सिंगल सॉलिड ब्लॉक दिखता था वो सिंगल सॉलिड ब्लॉक नहीं है. तो इस प्रिसीजन का काम जो स्टूडेंट्स सीख पाते हैं, वही मैन्युफैक्चर.

0: क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं?
1: बहुत फोकस आएगा कंपोनेंट्स को यूज करके भारत में एक्स्ट्रा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना, डिजाइन की कैपेबिलिटीज बढ़ना और क्वालिटी में जो भारत ने एक पहचान बनाई है उसको एक नए लेवल पे लेके जाना, सिक्स सिग्मा लेवल पे लेके जाना।
0: सर, अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन की बात करूं तो दो ऐसे बिल हैं जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन के तौर पे कहे जा सकते हैं, एक जैसे आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है और दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ये दोनों कानून को लेकर के प्रतिक्रिया जैसी भी रही हो, आप इसके काफी मुखर तरीके से, आपने खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात करूं कि उस पे रियल मनी वाले ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आपने काफी उस पे अपनी बात बहुत ही मजबूती के साथ रखा था, इन दोनों लेजिस्लेशन को आप किस तरीके से देखते हो और इनके जरिए पूरी इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव हुआ है वो अगर बता सकते।
1: ऑनलाइन मनी गेमिंग सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन के उभरा था, हजारों सुइसाइड्स, परिवार की सारी इनकम एक गेम में नष्ट हो जाना। ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग वॉज अ बिग बिग बिग प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कठोर निर्णय लिया और ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया। इसका बहुत बेनिफिट मिला है। अभी हाल ही में टाइटन इंडस्ट्रीज के सीईओ का इंटरव्यू था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के बैन के कारण बहुत सारा जो लोग पैसा वेस्ट कर देते थे मनी गेमिंग में, वो पैसा आज अपने परिवार के लिए अच्छे सामान खरीदने के लिए लगा रहे हैं, घर में बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, घर बनाने के लिए, उस सब में लग रहा है। इसी तरह से कई एग्जांपल्स है। एक इंडस्ट्री है जिसमें 30,000 लोग काम करते हैं, उनके सीईओ मुझे बता रहे थे कि महीने का पहला हफ्ता करीब करीब ऐसा होता था जिसमें व्यक्ति ने जितनी सैलरी ली वो सारी सैलरी ऑनलाइन मनी गेमिंग में लूज कर देता था, और उसके बाद में एचआर डिपार्टमेंट को फोन करके किसी तरीके से परिवार कैसे चलाए उसकी व्यवस्था में चिंता रहती थी। मतलब उनका कहना था कि उनके जान पहचान के लोगों में महीने में एक सुइसाइड होता था गेमिंग के कारण। वो सारी चीजें फिनिश हो गई। अभी हाल ही में एक जगह से प्रवास से लौटने के टाइम में इंडिगो का कर्मचारी मुझे मिला, उसने कहा कि मोदी जी को धन्यवाद देना कि ऑनलाइन मनी गेमिंग आपने बंद कर दी, कि मुझे 35,000 रुपए मिलती थी सैलरी, पूरे के पूरे 35,000 रुपए मैं गेमिंग में गंवा देता था, और अब मेरा परिवार, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने कहा मेरा शायद 3 या 4 साल का बच्चा है, अब परिवार हमारा खुश है।
0: लेकिन
1: इस तरह के कई एग्जांपल्स।
0: लेकिन कई बार ये भी बात कही जाती है कि वीपीएन के जरिए और उन सब के जरिए,
1: ये बात ठीक है आपकी,
0: तो आप कैसे उस पे रोक लगा?
1: ये बात ठीक है। देखो, जब भी इस तरह के कड़े कठोर कानून आते हैं तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन कुछ हद तक लोग गैर कानूनी तरीकों से करने का प्रयास करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे ड्रग्स का ले लो, चाहे किसी भी तरह के सेक्टर को ले लो। तो इसमें प्रयास हमारा लगातार रहता है कि इस तरह की जो इलीगल साइट्स हैं उनको बैन करने का। अब तक करीब करीब 10,000 के आसपास इलीगल साइट्स को बैन किया जा चुका है।
0: और सर, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के किस तरीके की?
1: बहुत ही वेल थॉट थ्रू बिल है ये, जिसमें 7 principles के बेसिस पे सिटीजन के डिजिटल डेटा को, डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करने का मेथड है। इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और दुनिया भर में इस बिल के कारण भारत की एक नई पहचान भी बनी, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्टिव मेथड यूरोप ने लगाया उसके कारण उनका इनोवेशन फिनिश हुआ। भारत के इस बिल में इस तरह से बैलेंस आया इनोवेशन और रेगुलेशन में, जिससे कि इनोवेशन भी फ्लरिश कर सके और रेगुलेशन भी प्रॉपर लेवल पे हो सके।
0: अगर मैं आखिरी में आपसे पूछूं कि हमने शुरुआत करी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो अगले 3 से 5 सालों में हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ और बदलाव देखेंगे और डिजिटल इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ेगा, अगर उसकी रूपरेखा पेश कर सकें आप तो?
1: टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो चेंज आएगा रेजिडेंट AI। एक टेलीकॉम टावर करीब 2000 पैरामीटर्स लेता है जिसपे वो काम करता है एक साथ। उन पैरामीटर्स को अभी जो एल्गोरिदम्स होती है वो एल्गोरिदम्स बड़ी प्रिस्क्रिप्टिव टाइप की एल्गोरिदम्स होती हैं, किस सिचुएशन में क्या करना है उस पर डिफाइंड होती है। अगर उसमें AI लगता है हर टावर के अंदर तो सिग्निफिकेंट लेस पावर कंजम्पशन हो पाएगा, सिग्निफिकेंटली बेटर कॉल क्वालिटी हो पाएगी, और डिजिटल इंडिया के नेक्स्ट फेज में टेलीकॉम का जो रोल है वो रोल और टेलीकॉम में AI का रोल वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
0: लेकिन ये भी कहा जाता है कि AI बहुत सारी नौकरियां ले सकता है, तो जब हम डिजिटल इंडिया के एक्सपेंशन की बात करेंगे, AI के इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती नौकरियां नहीं रहेंगी?
1: जितनी IT सेक्टर की इंडस्ट्रीज है उनके साथ हम लगातार एंगेज्ड हैं, किस तरह से नए प्रकार के स्किल्स क्रिएट किए जाए, नए प्रकार की ट्रेनिंग क्रिएट की जाए। अभी हाल ही में NASSCOM के माध्यम से IT इंडस्ट्री ने अपना नया कोर्स का पूरा करिकुलम बना के दिया है जिसको AICT के माध्यम से लागू करेंगे, जिससे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण जब भी डिसरप्शन आता है, जब भी परिवर्तन आता है, तो उस समय में

0: अगर इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों आपस में मिल जाए तो उस चेंज को बहुत स्मूथली कर सकते हैं. तो वही प्रयास है आईटी इंडस्ट्री के साथ मिलकर नए तरह के जो जॉब्स क्रिएट होंगे उन जॉब्स के लिए हमारे युवाओं को तैयार करने का प्रयास है.
1: अश्विनी वैष्णव साहब बहुत बहुत धन्यवाद.
0: नमस्कार.
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूचना और प्रसारण रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार. साक्षात्कार कर रहे थे पत्रकार शिशिर सिन्हा. ये आकाशवाणी है. विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अब सुनिए संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार. साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर.
3: नमस्कार. 26 मई 2014 वो दिन था जब सिर्फ सरकार नहीं बदली थी बल्कि करोड़ों भारतवासियों की जो आकांक्षा थी जो सपने थे वो भी ऐसा लगा था पूरे होने के कगार पर अब आगे बढ़ रहे हैं. और इसीलिए अब जब 12 साल पूरे हो रहे हैं तो फिर ये तो एक सवाल बनता है ना कि भाई 12 साल में इस देश में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोग मोदी मोदी मोदी मोदी कर रहे हैं. ऐसी क्या बात हो गई कि नरेंद्र मोदी हर राज्य में विजय पताका फहराते जा रहे हैं लहराते जा रहे हैं और भारत जो है वो विश्व स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब अपना एक अलग मुकाम रखकर लाया है. चलिए इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान है और वो खास मेहमान जो कि जब नॉर्थ ईस्ट में बात होती थी ना कि कौन चेहरा है तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आता था किरण रिजिजू जी का और वो अब अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं संसदीय कार्य मंत्री भी हैं इससे पहले कानून मंत्री रह चुके. तो एक तरीके से 2014 से लेके अब तक का सफर इन्होंने लंबा तय किया है. बहुत बहुत स्वागत है रिजिजू जी आपका.
4: धन्यवाद.
3: और 12 साल की ये जर्नी आप इस जर्नी को कैसे देखते हो.
4: ये जर्नी भारत का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा क्योंकि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किए गए थे मंत्रिमंडल का शपथ लेने से पहले उन्होंने हम 44 लोगों को बुला करके पहला संदेश जो दिया था वो मुझे आज भी याद है. मोदी जी ने कहा था कि हम लोग सिर्फ सत्ता में कुर्सी ऑक्यूपाई करने के लिए नहीं आया है हम देश का दशा दिशा और जनता गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेने के लिए हम आए हैं. तो तब से लेकर एक एक नीति आप देखेंगे तो भारत को एक नई मोड़ पर लेकर के 2014 के बाद हमने काम शुरू किया है और गवर्नेंस शासन करने का प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया है. और अब तो एक आम सा बात हो गया है कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाते हैं उसका लाभ तुरंत जनता तक मिल जाता है. नहीं तो पुराने दिनों में कांग्रेस के शासन के समय तो बातें बहुत होती थी कई घोषणाएं भी होती थी बजट में घोषणाएं रेलवे बजट में नई प्रोजेक्ट का घोषणाएं और हर समय चुनाव में तो घोषणा ही घोषणा होते थे गरीबी हटाओ नारा लगाना ये एक फैशन सा बन गया था उस जमाने में. लेकिन इन 12 सालों में सचमुच में जो काम हुआ है मैं मानता हूं कि मोदी जी का कार्यकाल है ये सचमुच में भारत को फिर से एक महान देश और जो पुराने में भारत का एक नाम था उसको फिर से पुनर्जीवित और फिर से पुनर्स्थापित करने में कामयाब हुआ है.
3: आपने क्योंकि रिजिजू जी गरीबों वाली बात की ना पहले का वो स्लोगन एक याद आता है कि जब 1 रुपया भेजते थे 10 पैसे पहुंचते थे आज 1 रुपया भेजते हैं तो कितने पैसे पहुंचते हैं.
4: आज तो जितना भेजता है उतना ही पहुंचते हैं क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री खुद ही सरेंडर हो गए थे. राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और खुद ही सरेंडर करके बोल दिया कि 100 रुपया भेजता है तो 15 रुपया पहुंचते हैं 1 रुपया में 15 पैसे पहुंचते हैं. आज तो एक बटन दबाया केंद्र सरकार की ओर से कोई भी स्कीम घोषणा करके उसको सिर्फ बटन दबाना है डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाता में पहुंच जाते हैं और सारा स्कीम जो है समयबद्ध क्रियान्वित हो जाते हैं. इसलिए जो बदलाव आज देखने को मिला है ऐसे ही सोचने से आपको पता नहीं चलेगा 12 साल पहले देश का हालत क्या था जब कांग्रेस यूपीए सरकार थे तब हम भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर के पॉलिसी पैरालिसिस होकर के और गरीबों को सरकार का कोई भी कार्यक्रम तुरंत कुछ भी नहीं मिलते थे. तो इतना बदलाव जो आया है इसको चंद शब्दों में कहना तो मुश्किल है मगर इतना तो कह सकता हूँ चाहता हूं कि जो हमारा सरकार का थीम है सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, तो गरीबों का कल्याण तो हुआ ही है, सेवा तो हम कर ही रहे हैं और सुशासन देश को भला हो रहा है, तो हर दृष्टि से हम कामयाब हैं।
3: तो आप कह रहे हो पॉलिसी पैरालिसिस, ये जो नारा और स्लोगन चला था उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार के समय में, आज राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज पीएम का नारा चला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा किया तो अब कॉम्प्रोमाइज पीएम वो बोल रहे हैं।
4: कांग्रेस के समय में जो हालत था वो हमको बताने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, देश के जिस आदमी का भी आप पूछो कांग्रेस जमाने में क्या हालत था, और कांग्रेस के खुद नेताओं से पूछो, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में तो अमेरिका उसका मास्टर थे, चिदंबरम साहब खुद होम मिनिस्टर थे तो खुद ही बताया कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया और भारत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका ने वार्निंग दिया कि कुछ नहीं करना है। फिर चिदंबरम जी ने खुद भाषण दिया था पार्लियामेंट में जब हमारा सत्ता में आए, कहा कि आप डिजिटल इंडिया का बात करते हैं, गांव में गरीब लोगों को डिजिटल से क्या लेना देना है, और जो हमारा पेमेंट होता है यूपीआई के बारे में मजाक उड़ाया था कि गरीब जो सब्जी बेचते हैं सामान बेचते हैं उनका डिजिटल पेमेंट कैसे होगा,
3: वो बैंक के खाते का क्या करेंगे,
4: तो ये सारा चीज जो है वो तो कांग्रेस खुद ही कहते हैं। राजनीतिक दृष्टि पर कुछ भी आप कह लो लेकिन मालिक तो जनता है, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज तो पूरी तरीके से कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस पार्टी ने देश को ही कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया था। आज तो मोदी जी अपना निर्णय लेते हैं देश हित में, और देश हित में किसी के दबाव में काम नहीं करते, तो राजनीतिक दृष्टि से कोई अगर कह देगा तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा, स्पेशली कांग्रेस पार्टी तो कुछ कह नहीं सकते, उन्होंने लगभग 60 वर्ष इस देश को शासन किया और देश को बहुत गरीब राष्ट्र बना दिया था, सबको मालूम है हमारा इकोनॉमी हमारा पर कैपिटा इनकम कांग्रेस के जमाने में कितने नीचे थे। अब हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं तो सपना देखता था उस जमाने में कि चाइना 8% 10% से ग्रोथ करते हैं, हम कब चाइना की तरह ग्रोथ करेंगे, और मोदी जी ने हमको चाइना से भी ज्यादा स्पीड में अपने इकोनॉमी का ग्रोथ पाथ को आगे लेके खड़ा कर दिया। तो ये सब देखिए, इसमें तो कोई भी भारतीय फक्र होगा कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं।
3: आपने क्योंकि चाइना की बात कही ना, तो नॉर्थ ईस्ट जहाँ से आप आते हैं वो समय और वो दौर भी हम लोग देखते थे कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी पहचान का संकट था, पहचान बताने में भी उनको घबराहट होती थी, दिल्ली तक आने में तो उनको बहुत समय लग जाता था, वो बदलाव भी देखा है क्या हमने?
4: बदलाव तो क्या कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा परिवर्तन हो गया है, बदलाव सिर्फ इंक्रीमेंटल बदलाव नहीं है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है, क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वो तो दिल्ली से बहुत दूर महसूस करते थे, जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल के लोग दिल्ली जाने के लिए भी सोचना पड़ता था और दिल्ली वाले भी नहीं आते थे, अगर आते तो भी मेहमान की तरह आते हैं। आजकल तो चाहे लद्दाख हो चाहे मिजोरम हो अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह ट्रेन से कनेक्ट हो गए हैं, एयरपोर्ट से सबको कनेक्ट किया गया है और टनल बन रहे हैं, नए नए परियोजनाएं, हाईवे कितना बन गया है, जो 1 इंच हाईवे नहीं बने थे 12 साल पहले आज वहाँ चकाचक हाईवे बन गए हैं, लोग आराम से गाड़ी लेकर के आना जाना हो रहा है, गांव मोबाइल टेलीफोन पहुंच गए हैं, वो भी इतना सस्ता है डेटा कि आप आराम से एक बार आपने अपना डेटा लोड कर लिया फिर आराम से बात करो, आप इंटरनेट में काम करो। उस जमाने में तो फोन करने के लिए भी कितना चिंता करता था कि उसका जो बिल आते थे, तो आजकल तो डेटा भी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता भारत में है मोबाइल।
3: लेकिन इसका फायदा या नुकसान, हर गांव में बच्चा कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है,
4: वो तो विषय अलग है, उसको एक व्यवहारिक तरीके से क्या करना चाहिए वो विषय अलग है, लेकिन सुविधा सबको मिला है ये बड़ी बात है।
3: जेन जी के बारे में क्या सोच रहे हो आप, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हम बात कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर और जेन जी खतरा लग रहा है क्या?
4: देखो जेन जी का तो ये शब्द पश्चिमी देशों से उन्होंने क्रिएट किया है, हम तो अपना पारंपरिक जो मानक है हम उसी से चलते हैं, फिर भी एक टाइटल दिया गया है नए युवाओं को, जो एक पर्टिकुलर वर्ग को जेन जी जो कहते हैं वो आज 18 साल 20 साल 25 साल के लगभग उसमें ज्यादातर लोग हैं,
3: क्योंकि सबकी निगाह उन्हीं पर लगी, राहुल गांधी जेन जी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव जेन जी से मिल रहे हैं, सब जेन जी से,
4: राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र में कुछ लोग तो विरोध रहेंगे ही, एक पक्ष होते हैं एक विपक्ष होते हैं, लेकिन आप दिल से अगर नहीं जुड़ेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, लगभग 50% वर्ष एक साल में वो विदेश में रहते हैं, वहाँ वो छुट्टियां मनाते हैं रिजोर्ट में छुप के, कहीं कहीं जाते हैं, कभी कभी बताते भी नहीं है, और फिर जब एक बार आएंगे

0: ये देश में और फिर एक स्टेटमेंट देंगे, मोदी जी को गाली देते हैं, फिर विदेश गायब हो जाते हैं, फिर वापस आएंगे मोदी जी को फिर दूसरा गाली देंगे, फिर विदेश चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम वाला राजनीति है उससे आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं और लोगों के अंदर आप नहीं घुस सकते हैं। हमारा तो नेता और हमारा पार्टी 24 घंटे हम तो देश के लिए और देश के जनता के बीच में हम रहते हैं।
1: ये विदेश वाला जो है, विदेश जाने में क्या बुराई है?
0: वो तो अच्छा है, अगर वो विदेश जाते रहे तो कांग्रेस का नैया जो है डूबते रहेंगे। राजनीतिक तौर पर हमको कुछ नहीं कहना है, अगर राहुल गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और विदेश में ही उसका दिल है और अपने विदेशी दोस्तों के साथ ही अगर वहाँ दिल बहलाने के लिए विदेश में रहता है, हमारा क्या आपत्ति है? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वो कभी कभी वापस आते हैं भारत में, अपने देश में आकर के फिर गाली देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, चुनाव के बीच में भी वो विदेश चले जाते हैं, तो नुकसान तो कांग्रेस का है, हमारा क्या नुकसान है?
1: अब वो कांग्रेस पार्टी कहती है भाई सरकार आपकी, आप पता करो विदेश में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते।
0: देखो, किसी का जिंदगी में कौन क्या खाता है पीता है, कहाँ रहते हैं, किसके साथ में वो घूम रहे हैं, इतना हमारा रुचि नहीं है। हमारा सिर्फ इतना तक सीमित ध्यान जाता है कि वो देश के विरोधी ताकतों के साथ में मिलना जुलना होते रहते हैं विदेश में, इससे हम आपत्ति है, हम उसको आपत्ति करते हैं।
1: आपको लगता है कि ये जो विदेश विदेश वाला राहुल गांधी का है, उसके बाद वो आते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में फिर वो एक एजेंडा बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही एजेंडा वो लेकर के आते हैं क्या?
0: जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो झलकते ही है, क्योंकि देश को कोसते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो देश के विरुद्ध जो लोग काम करते हैं उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जो राहुल गांधी जी कहते हैं पार्लियामेंट में वो सेम चीज पाकिस्तान कहते हैं, और जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और इन जैसे लोग जो भी नैरेटिव चलाते हैं उसके तालियां पाकिस्तान में बजता है, तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको किस तरीके से समझाऊं देशवासियों को कि जो विपक्ष है वो भी तो देश के लिए सोचना चाहिए ना। विपक्ष का काम ये नहीं है कि देश के खिलाफ काम करे, वो सरकार को गाली दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ उनका बोलने का अधिकार है, और लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ मजबूती से अगर विपक्ष खड़ा रह करके निगरानी रखेंगे, कोई करप्शन हुआ है क्या, कहीं कोई नीति में भूल चूक हुआ है क्या, अगर उसमें विपक्ष हमला करते हैं तो ये तो स्वागत है, लेकिन कोविड का समय, ये इमरजेंसी समय है, तब भी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश गर्व है हमारे सेनाओं के, जो देश के प्रति उन्होंने जो बल दिखाया है उसको भी विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं, और अभी ईरान अमेरिका इसराइल का लड़ाई के चलते तेल गैस आने में कष्ट हो रहे हैं, ये तो एक तरीके से एक आपातकालीन टाइप का सिचुएशन हरमूज में पैदा हो गया है मिडिल ईस्ट में, तो उससे हमको दिक्कत हो रहे हैं, तो ऐसा में तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा में भी देश का खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी जी का खिलाफ बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आमतौर पर विरोध जो है सरकार के खिलाफ आप जितना कर सकता है कर सकते हैं, उसमें लोकतंत्र में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब एक विशेष परिस्थिति होता है, ऐसे समय में सबको एक साथ खड़ा होना होता है। जैसे जब 1962 में लड़ाई हुआ चीन के साथ, तो पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी में टूट हुआ, एक ग्रुप जो है चीन का समर्थन में आया, वो कम्युनिस्ट भाग हो गया। 1965 हो, 71 हो, या कारगिल के समय में भी हो, हर समय इस तरीके के जब विशेष परिस्थिति आते हैं, जब देश किसी से लड़ रहे हैं, दुश्मनों के साथ में देश मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा समय में पूरा देश एकजुट खड़ा रहना चाहिए, ये तो सब मानते हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा है ऐसा विपक्ष आज का दिन में पैदा हो गया है कि देश किसी विपत्ति से जूझने के लिए, कोई आपातकाल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जब काम कर रहे हैं, ऐसे समय में सरकार के खिलाफ देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, इससे मैं बहुत दुखी हूँ।
1: संसद में आपको लगता है ये जो बर्ताव है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इतने समय में?
0: देखिए, राहुल गांधी जी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है, मैं इतने सालों से उसको देख रहा हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि वो हल्के फुल्के से इधर उधर घूमते रहते हैं, अनाप शनाप बात करते रहते हैं, लेकिन जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो मैंने सोचा कि वो नियंत्रित होंगे, लेकिन और बिगड़ गया, नेता प्रतिपक्ष होने के बाद तो और भी उसका भाषा पूरा बिगड़ गया है। अब तो पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो नियम के बाहर बोलते हैं और गाला गाली पे उतर जाते हैं, दिन भर नारा लगाते रहते हैं, अपना एमपीओ को जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर गेट में खड़ा करके वही दिन भर वहाँ तमाशा कराते रहते हैं, तो एमपी इसके लिए नहीं आया, एक नॉर्मल सी कर दिया। अब कांग्रेस के एमपी लोग भी ये सोचने लग गया कि वो तो पार्लियामेंट में इसलिए चुन के आए कि वो इस तरह का हरकतें करना है, उसी को अपना दायित्व तो मान लिया है, संसद के अंदर में बोलना, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोलना और सरकार का नीति में खामियां है तो उसको उजागर करना और फिर जहां जरूरत है सुझाव भी दे सकते हैं या आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन वो संसद में बोलना, वहां प्रदर्शन करना, ये सारा चीज जो है लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का हरकत कैसे है।
1: मोदी जी ने जो कोई एक बात आपसे इन 12 सालों में कही हो जो आपको हमेशा याद रहेगी?
0: मुझे तो इतना बातें प्रधानमंत्री जी की ओर से सुझाव निर्देश या हमको गाइडेंस देते रहते हैं तो एक बोलना मुश्किल है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि देश हित में जो भी आपको दायित्व मिला है उसको पूरी तरह से निभाना है, इसलिए हम अपना ड्यूटी से प्रतिबद्ध हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपने इतनी बेबाकी से ये सब बात कही और जाहिर तौर पर देखिए 2014 से अभी तक की ये जो जर्नी है, इसीलिए हमने इसको भारत रीलोडेड का नाम दिया है क्योंकि इस वक्त नए भारत की बात हो रही है और नए भारत का जो सपना भारतवासियों ने देखा था वो कितना पूरा हुआ, इस पर हमसे खास बातचीत की। नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भारत को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके प्रयासों और समावेशी एवं आर्थिक रूप से गतिशील भारत

करके उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बात की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज जल डम रू मध्य के पास अमरीकी सैन्य हेलीकॉप्टर को गिराने के लिए ईरान जिम्मेदार है और अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। श्री ट्रंप की यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में की गई जब एक ड्रोन ने रणनीतिक जलमार्ग के पास दुर्घटनाग्रस्त हुए अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टर के चालक दल को बचाया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक खुली बैठक का आयोजन किया। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने, पीड़ितों के लिए वसूली तंत्र में सुधार करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए व्यवहारिक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और फिर निर्बाध रूप से दुनिया भर के गंतव्यों के लिए आगे की यात्रा कर सकते हैं। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय की तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यूं तो हैं बातें बहुत सी दिल की और दिलदार की, यूं तो हैं बातें बहुत सी दिल की और दिलदार की, आओ सुनाए हम तुम्हें आज कहानी प्यार की। दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ अंजू और लेकर आई हूं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना फिल्म कभी कभी से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। नई शाम ढलती नई महफिल सजती, नई शाम ढलती नई महफिल सजती, और ना लफ्ज मिलते ना गजल बनती। बेजान सी थी जिंदगी हमारी, हम कुछ भी ना होते अगर तुम ना होते।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म अगर तुम ना होते से ये गीत सुना। तुम क्या जानो कि कितना प्यार है तुमसे, तुम क्या जानो कि कितना प्यार है तुमसे, लफ्ज कम पड़ जाए वो इकरार है तुमसे, धड़कन बनकर जो सीने में उतरती है बस वही बेपनाह मोहब्बत है तुमसे।

कभी बस बात इतनी सी थी कि तुम अच्छे लगते थे, कभी बस बात इतनी सी थी कि तुम अच्छे लगते थे, और अब बात इतनी बढ़ गई है कि तुम बिन कुछ अच्छा नहीं लगता।

तेरे दिल की बातों को मैं कैसे जान पाऊंगी, तूने मुझे समझा नहीं ये मैं कैसे बता पाऊंगी। दिल से प्यार करती हूं तुझे ये कैसे समझा पाऊंगी, पर तेरे दिल में क्या है मैं नहीं जान पाऊंगी। तुम ही बता दो कि तुम्हारे दिल में क्या है।

तुमसे कितनी मोहब्बत है ये मैं बता नहीं सकती, तुमसे कितनी मोहब्बत है ये मैं बता नहीं सकती, अपनी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत जता नहीं सकती। मेरी जिंदगी का हर लम्हा तुम्हीं से तो शुरू होता है, तुमसे दूर रह के एक पल भी बिता नहीं सकती।

सब कुछ भूल बैठे हैं तेरे प्यार में हम, अब तो खुद से भी वाकिफ नहीं रहे हम। तूने इस कदर अपना बनाया है हमें कि तेरी धड़कन और अपनी सांसों में फर्क भी भूल गए हम।

होश वालों को मुबारक हो उनकी समझदारी, होश वालों को मुबारक हो उनकी समझदारी। हम तो तेरे इश्क में सब कुछ लुटा बैठे हैं, इस कदर खोए हैं तेरी चाहत के उजाले में कि अपने ही घर का पता भूल बैठे हैं।

लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम कहीं नहीं जा रहे हैं. हम मिलेंगे आपसे खुशकर 10 मिनट पर कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर. अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार. सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। श्री जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भारत को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कल कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके प्रयासों और समावेशी एवं आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बात की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहां ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग हो गया, आज जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज डल डमरू मध्य के पास अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर को गिराने के लिए ईरान जिम्मेदार है और अमेरिका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। श्री ट्रंप की यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में की गई, जब एक ड्रोन ने रणनीतिक जलमार्ग के पास दुर्घटनाग्रस्त हुए अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टर के चालक दल को बचाया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक खुली बैठक आयोजित

0: किया। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने, पीड़ितों के लिए वसूली तंत्र में सुधार करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और फिर निर्बाध रूप से दुनिया भर के गंतव्यों के लिए आगे की यात्रा कर सकते हैं। मौसम विज्ञान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय की तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार, केरल, माही, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज लू चलने का अनुमान है। श्रीलंका के दामुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। भारत ए के 278 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका ए 259 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Ministry of External Affairs acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi yesterday, spokesperson at the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
2: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
1: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, JAAC, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's foreign policy is now in sync with its core national goals. The minister said that foreign policy and diplomacy have got integrated with priorities of the government, focusing on social security and national development. Dr. Jaishankar made these remarks in an interview given to DD News. He said that national security in the present time is not just about protecting the borders. It includes security in terms of economy, energy, health, fertilizer and cyber strength. Dr. Jaishankar said that India is safeguarding its deep strategic and economic interests in Gulf region while also maintaining its independent ties with Iran, United States and Israel. Prime Minister Narendra Modi held a telephone conversation yesterday with the Emir of Kuwait, Sheikh Mishal Al Ahmad Al Jaber Al Sabha. The two leaders exchanged views on the evolving security situation in West Asia. Prime Minister expressed deep concern over the escalation of tensions and reaffirmed India's strong condemnation of attack on Kuwait's sovereignty and territorial integrity. He reiterated that the call for de-escalation, dialogue and diplomacy

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. समय हुआ है 1:11:13. मैं हूं आपके साथ अंजू. कार्यक्रम लेकर आई हूं गीत सुहाने, तो रहिए इस गीतों के सफर में मेरे साथ. पहला गीत लेकर आई हूं फिल्म अभिनेत्री से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने.

सच पूछे तो इसकी हमें भी खुद खबर नहीं कि मौसम बदल गया या बदलने लगे हैं हम, क्योंकि अभी तो धुंध में लिपटे हैं सब मंजर। तुम आओगे तो तुम्हारे आने तक ये मौसम बदल चुका होगा।

जब भी थाम लेते हो तुम बाहों में मुझे, लगता है जैसे वक्त वहीं थम गया है। दुनिया तो चलती रहती है अपनी रफ्तार से, पर मुझे मेरा पूरा जहां तुझ में सिमट गया लगता है।

लेती हूँ तेरा नाम हर एक नाम से पहले, लेती हूँ तेरा नाम हर एक नाम से पहले, कुछ जिक्र नहीं करती हूँ उस काम से पहले, मेरी हर गजल मेरी हर शायरी बस तेरा ही नाम लेती है हर काम से पहले।

दिन तो ढल चुका है, ये रात भी देखो हम पर हंसे जा रही है। हर पल तन्हाई खामोशियां बहुत सता रही हैं। कहना

0: तो सभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार समाचारों के बाद तो 5:10 पर आपसे फिर से मुलाकात होगी सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कल कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जावेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की उन्होंने शांति और स्थिरता बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन ग्लोबल साउथ के लिए उनके प्रयासों और समावेशी एवं आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप हैं डॉ जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है श्री जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां दुनिया भारत को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बात की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है उनके पहले भी सहयोग रहा है इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं इसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं अनेकों राज्यों की मीटिंग हो गया आज जैसे बिहार की मीटिंग था आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं
1: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक खुली बैठक का आयोजन किया एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने पीड़ितों के लिए वसूली तंत्र में सुधार करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए व्यवहारिक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजूर, कार्यक्रम लेकर आई हूँ रात सुरमई. आप सब रहिए इस घंटे मेरे साथ, सुनेंगे बहुत ही मधुर गीत. आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार.

कहना तो बहुत कुछ है पर लव साथ नहीं देते, कहना तो बहुत कुछ है पर लव साथ नहीं देते, तुम निगाह से समझ लो, हम जुबान से नहीं कहते।

मैं तेरे गम में शामिल हूँ, तू मेरी खुशी में शामिल हो। मैं तेरे गम में शामिल हूँ, तू मेरी खुशी में शामिल हो। मेरी हंसी हो तेरे चेहरे पर, हर दर्द तेरा मुझे हासिल हो।

उसने कहा, तुम इस कदर हसीन हो कि क्या कहें, तुमको ही देखते रहें या खुद को संभाले। जानती हो सादगी में भी तुम कयामत ढाती हो, और जब भी सामने आती हो तो धड़कने बढ़ाती हो।

जी भर के देख लूं तुम्हें अगर वक्त ठहर जाए, जी भर के देख लूं तुम्हें अगर वक्त ठहर जाए, बढ़ती हुई दिल की धड़कन भी कहती है कि ये समा बदल जाए। तुमसे बिछड़ने का खौफ इस दिल को सताता है, ये कहता है कि तुम पास रहो और रात का ये पल यहीं ठहर जाए।

दोस्तों अब समय हो गया है जाने का, क्योंकि अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपके साथ रहेंगे पंकज हमराही लेकर। मैं आपसे मिलूंगी जल्द ही किसी न किसी मोड़ पर। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उनके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कल कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके प्रयासों और समावेशी एवं आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेक राज्यों की मीटिंग हो गया, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक खुली बैठक का आयोजन किया। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने, पीड़ितों के लिए वसूली तंत्र में सुधार करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA ने सतत विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर ब्रिक्स विज्ञान अकादमियों के फोरम की पहली बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि ये बैठक AI का उपयोग और ग्लोबल साउथ सहयोग को सुदृढ़ करने के विषय पर आयोजित की गई। इसमें 10 देशों ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, बेलारूस, नाइजीरिया और वियतनाम की विज्ञान अकादमियों ने जिम्मेदार और न्यायसंगत AI विकास पर एक साझा घोषणा को आगे बढ़ाने के लिए भाग लिया। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय की तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज लू चलने का अनुमान है। श्रीलंका के दामबला में एक दिवसीय त्रिकोणीय

आधी रात के 3:10 हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल और अब शुरू होता है हमराही शो मेरे यानी पंकज के साथ। मैं आपसे मिलता हूँ इन दो गानों के बाद। आप इन दो गानों के मजा लीजिए, फिर मुलाकात होती है।

ब्यूटीफुल सॉन्ग, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि आप गांव में ही हैं। मतलब मुझे तो स्टूडियो में बैठकर बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी। हेमलता और सुरेश वाडकर की आवाज में नदिया के पार मूवी से ये गाना था, रविंद्र जैन के बोल और संगीत था। हमराही शो शुरू हो चुका है मेरे यानी पंकज के साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और बताइए कैसा बीता आज आपका दिन। आई नो जिंदगी की उठा पटक और भाग दौड़ इंसान को मन और शरीर से थका देती है, लेकिन अच्छी बात पता ये भी है कि रात का ही सफर ना हमें सुस्ताने और सुकून के कुछ पल जीने के लिए देता है। तो आप सब कुछ भूलकर मेरे साथ गानों की हसीन दुनिया में चलिए और वहां से आपको जो कुछ भी मिले ना उसे झट से अपनी जेबों में भर लीजिए। यकीन मानिए आज की ये वाली रात फिर नहीं आएगी, कल जो रात आएगी वो और होगी। इन दो गानों के बाद आपसे मिलता हूँ। अभी के लिए चांदनी मूवी का ये गाना बाबला मेहता और लता जी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और शिव हरी का म्यूजिक। इंजॉय।

आई एम श्योर आपने ये वाली मूवी तो जरूर देखी होगी और ये सच में इतनी प्यारी फिल्म है कि इस फिल्म को तो कम से कम महीने में दो बार तो देख ही सकते हैं। इतनी अच्छी ये फिल्म है। भूपेंद्र सिंह और लता जी की आवाज में मौसम फिल्म का ये गाना था, मदन मोहन की म्यूजिक कंपोजिशन और गुलजार के बोल थे। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि प्यार मोहब्बत के मामले में आपको अपने आप से कोई शिकायत है या नहीं, तो शायद आप कहेंगे हाँ। और वो ये है कि काश अपने पसंदीदा इंसान को आपने समय रहते अपना बना लिया होता तो शायद जिंदगी और ज्यादा सुंदर होती। इसलिए मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अपने मन की बात ना सामने वाले को जरूर कह देनी चाहिए, उसको बताना चाहिए कि भाई आप उससे प्यार करते हैं, आप उसको पसंद करते हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है जब हम अपने मन की बातें जो है छुपाते हैं, और वो भी वो बातें जो सामने वाले को खुश कर सकती हैं। अब राम जाने ऐसा है, हम ये क्यों करते हैं कि हम बताना नहीं चाहते, लेकिन जो नेगेटिव बातें होती हैं वो हम बहुत जल्दी सामने एक्सप्रेस कर देते हैं कि नहीं भाई हमें आपसे चिढ़ है, ये है वो है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो होनी नहीं चाहिए, प्यार होना चाहिए और प्यार हमेशा जताया जाता है, छुपाया नहीं जाता। इसलिए हिम्मत करके अपने मन की बात कह देनी चाहिए। हम रही है शो का नाम, मैं हूं पंकज आपके साथ FM गोल्ड पर, और दो गाने के बाद आपसे मिलता हूं। रत्नादीप मूवी का ये गाना किशोर दा और लता जी।

क्या हसीन जमाना रहा होगा वो जब ऐसी फिल्में बनती होंगी। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी मैं बहुत मिस करता हूँ कि मैं उस टाइम उस मूवी के उस जमाने में सेट पर क्यों नहीं था, ताकि मैं सामने से मीना कुमार जी को देख सकता हूँ। भाई उनके बारे में तो बहुत सुना है कि बला की खूबसूरत थी। आशा जी और मोहम्मद रफी की आवाज में बहू बेगम फिल्म से गाना था, साहिर लुधियानवी के लिरिक्स थे और रोशन का म्यूजिक था। जब आप किसी से प्यार करें तो इसका ना इंतजार भी जरूर कीजिए, बार बार पलट कर उसे आवाज देके बुलाइए ताकि उसे आप अपना बना सकें। अब दिक्कत ये है कि लोग ना अपने अहंकार में आके अपने प्यार को आवाज नहीं देते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है सामने वाला अपने आप समझ जाएगा। अरे भाई अपने आप कोई नहीं समझता, समझाना पड़ता है। लेकिन बात जो है वो यहां आकर खत्म हो जाती है कि तुमने कहा नहीं मैंने सुना नहीं। यकीन मानिए एक पसंद का शख्स अगर जिंदगी में आ जाए ना, फिर हर दिन हर पल बेहद हसीन लगता है और जिंदगी इतनी प्यारी लगती है कि बस जीने का पल ऐसा मन करता है कि हर पल जिंदगी जो है बहुत गुलजार सी लगती है, मन करता है जीने का, जिंदगी अच्छी लगती है।

मानो या ना मानो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्यार में ना किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है और किस्मत आपको मिलाने के लिए ऐसी सिचुएशंस डिजाइन कर देती है कि एक दूसरे के दिल में प्यार पैदा हो ही जाता है और मोहब्बत का हसीन परिणाम होता है शादी, और ये दुनिया की सबसे प्यारी रस्म है। बस इतना ध्यान रखें कि पार्टनर आपकी और आप उसकी पसंद हो। अब अगले घंटे नेक्स्ट शो अरुणिमा में मैं मिलूंगा आपसे सुबह 4:10 पर 4 बजे के हिंदी और अंग्रेजी समाचारों के बाद। और अब ये वाला गाना जो हमें अलग ही दुनिया में ले जाता है, फ्रॉम द मूवी लम्हे, हरिहरन और लता जी की आवाज। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। मैं हूं पंकज आपके साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उनके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा

0: बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कल कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जावेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके प्रयासों और समावेशी एवं आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं। इसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ से ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग हो गया, आज जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक खुली बैठक का आयोजन किया। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी साहब रामासुब्रमण्यम ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने, पीड़ितों के लिए वसूली तंत्र पर सुधार करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए व्यवहारिक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA ने सतत विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर ब्रिक्स विज्ञान अकादमियों के फोरम की पहली बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि यह बैठक AI का उपयोग और ग्लोबल साउथ सहयोग को सुदृढ़ करने के विषय पर आयोजित की गई। इसमें 10 देशों ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, बेलारूस, नाइजीरिया और वियतनाम की विज्ञान अकादमियों ने जिम्मेदार और न्यायसंगत AI विकास पर एक साझा घोषणा को आगे बढ़ाने के लिए भाग लिया। मौसम विज्ञान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: News read by R.S. Raghu. The Ministry of External Affairs acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses.

सुबह के 4:10 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। मैं हूं पंकज आपके साथ और अब शुरू होता है कार्यक्रम अरुणिमा। और इस पूरे घंटे आप सुनेंगे एक से बढ़कर एक गाने, और शुरुआत करते हैं सीमा फिल्म से इस गाने के साथ मोहम्मद रफी और शारदा की आवाज में। ये दो गाने सुनिए और फिर मैं आपसे मिलता हूँ।

गाना सुन के है कुछ इस गाने में ऐसे कुछ इमोशंस अटैच है मेरे, लेकिन गाना वाकई बहुत अच्छा है। राजेश रोशन का म्यूजिक, किशोर दा और लता जी की आवाज में, खट्टा मीठा फिल्म का ये गाना था गुलजार के बोल। और सुबह के 4:20 हो चुके हैं। देखिए भाई, रात कितनी भी काली हो ना, सुबह जरूर आती है और अरुणिमा आ चुकी है। आसमान में अभी बहुत हल्की है, लेकिन हाँ छोटी सी सुबह तो हो गई है। और पता है, अभी खिड़की से मैंने चांद को देखा, आधा सा चांद निकला हुआ, इतना सुंदर लग रहा है, मैंने उसे अपनी मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है, अब दिन में देखूंगा उसे। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर अभी आप आसमान की तरफ देख सकते हो ना, तो आप देखें आधा चांद निकला हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन आधे चांद को देख के मेरी थोड़ी सी सैडनेस होती है कि अकेला है बेचारा, और आसमान में समय सब लोग सो रहे हैं लेकिन ये जाग रहा है। लेकिन फिर भी यही तो नेचर की खूबसूरती है। मैं पंकज हूँ आपके साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। अरुणिमा है शो का नाम। जिंदगी चलती रहेगी और अब इसमें रंग भरने की जिम्मेदारी आपकी है। अपनी पसंद के रंगों से इसे जैसे चाहे सजा लीजिए।

0: के तले।
1: ऐसी दुनिया तो हम अपने मन के अंदर बनाकर शांति से जी सकते हैं, लेकिन बस इतना करना है कि बाहर घट रही किसी भी परिस्थिति को ना अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि यही चीजें जो है हमारे मन की मजबूती को तोड़ती हैं। सुनते रहिए अरुणिमा मेरे यानी पंकज के साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। अगर मन पर हावी हुई ना कोई भी बात, जो बाहर की बातों को हम अपने अंदर जब ले जाते हैं तो ये सिचुएशन जो है ना हमारा दिमाग खराब कर देती है और बहुत सारी चीजें हमारे आसपास जो अच्छी होती है वो भी हमें खराब लगने लगती है। कहते ना कि अगर आपका मन खुश है तो आपके लिए हर सिचुएशन जो है वो अच्छी होती है। और कई बार तो हम मन में उठ रही बातों से ही भागते हैं, हमारा मन बार बार हमें हमारी सच्चाई से रूबरू करवा रहा होता है, वो बताता है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं, मन खुद हमें बताता है, लेकिन हम मन की उस आवाज़ को दबाते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शायद ये ठीक नहीं है। लेकिन अपने ही मन से भागना और अपने ही मन की बातों को नज़रअंदाज करने वाकई बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है मन के साथ और अपने साथ ही। खैर अभी मैं आपको सुनवा रहा हूँ, अब मन की बात चली है और मन पर गाना ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है।

आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मैं हूं पंकज आपके साथ और शो का नाम है अरुण मैम। जिस दिन हम दूसरों के मूड पर अपनी खुशियों को डिपेंड करना छोड़ देते हैं ना, उस दिन आप सही मायने में जो है विजेता हो जाते हैं। और कहते भी हैं कि मतलब अपने जो है आत्मदीपो भवा, हमें अपने लिए जो है अपनी खुशियों के लिए जो है जीना चाहिए। और एक चीज़ ये भी है कि किसी ने अगर आपकी तारीफ की तभी आप अपने आप को सफल माने, ये ठीक नहीं है, क्योंकि आपका मन आपकी मेहनत और कठिनाइयों को अच्छे से जानता है और बता देता है कि आप कितने सही हैं। इसलिए अपना हर तरह से बेस्ट दीजिए और ऑटोमेटिकली ही आप खुश रहेंगे। बस बदले में आप कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि उम्मीदें कई बार हर्ट कर जाती हैं। लेकिन ये वाला जो गाना है दोस्त मूवी का, मैं आपको गाना प्ले करके सुनाने वाला हूँ। ये गाना वाकई एक बहुत अच्छी मोटिवेशन देता है और मतलब लिखने वाले ने भी क्या गजब का गाना लिखा है और बहुत ही अच्छा है। तो इस गाने को सुनिए, फील कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में।

आशा भोसले जी की आवाज में नरम गरम फिल्म का ये गाना था और सडनली मुझे आशा जी की याद आ गई, तो मैंने सोचा आपके साथ ये गाना शेयर करना चाहिए। और ये फिल्म भी बहुत अच्छी है, अगर आपने नहीं देखी तो नरम गरम मूवी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आप इस मूवी को देखिएगा, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। अब वैसे तो मुझे आशा जी की याद आई थी, लेकिन याद के साथ एक इसका अपोजिट भी होता है, वो है भूलना। लेकिन भूलने के बारे में मैं बात कहूँगा कि हमारी जो कुछ नेगेटिव सोच होती है, कुछ ऐसी बातें जो हमें हर्ट करती हैं, वो भूलना जो है वो एक अच्छी आदत है। देखिए, भूलिए कड़वी बातों को, यादों को, भूलिए हर उस चीज़ को जो आपको दुख दे। समझ लीजिए कि कोई सपना था जो बीत गया, लेकिन आगे बस इतना प्रयास रखिए कि आपके जीवन में जो कुछ भी कड़वी सिचुएशन हो उसको आप पहली चीज़ तो आने ना दें, और अगर वो आ जाती है तो फिर उसको ज़्यादा दिमाग पर हावी ना होने दें। ठीक है, आई है, चली जाएगी। तो इस तरह से सिचुएशंस को हैंडल किया जा सकता है। हालांकि कहना बहुत आसान है और जब एक्चुअल में सिचुएशन आती है तो मुश्किल तो होती है, लेकिन फिर भी इस तरह की बातों को ढाल बनाकर जो है अपने आप को बचाया तो जा ही सकता है। और सब ऐसे ही करते हैं, एट द एंड सब ऐसे ही कर रहे हैं। अब मैं पंकज आपसे अगले घंटे सुबह 5:10 पर नेक्स्ट शो भोर सुहानी में आपसे मिलूंगा, सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। अरुणिमा शो का समय जो है कुछ मिनटों में पूरा हो जाएगा, तो मैंने सोचा आपके लिए कुछ और गाने लाइनअप करता हूँ, बहुत अच्छे गाने, आपको बहुत मजा आएगा गाने सुनने में। तो आप इन गानों को सुनिए और सुबह 5 बजे हिंदी और इंग्लिश में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक सेवा की थी। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिनों का हो गया है, जिससे वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के भी इस बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में सभी घटक दलों के नेताओं के अलावा एनडीए शासित सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर 14वीं कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। इस वार्ता का विषय है परिवर्तनशील दुनिया, वैश्विक, क्षेत्रीय और स्थानीय परिप्रेक्ष्य। डॉक्टर जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत की भूमि सीमाओं पर माल प्रसंस्करण और यात्री आवागमन को डिजिटल बनाने तथा सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक बैठक का आयोजन किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमणियन ने बैठक में साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक उपायों की आवश्यकता पर भी बल दिया। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय की तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has become the longest-serving elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26 May 2014. He has surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13 May 1952 and served until 27 May 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 dates. From 26th May 2014 to today, 10th June 2026, Prime Minister Modi's continuous tenure is now 4,399 days, making him the longest-serving elected Prime Minister in India's history. A meeting of the National Democratic Alliance, NDA, will be held in New Delhi today to celebrate its government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected PM of India. All constituents of the alliance besides the top leadership of the BJP including Prime Minister Modi are expected to attend the

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। सुबह के 5:10 हो चुके हैं। मैं हूं पंकज आपके साथ और अब शुरू होता है कार्यक्रम भोर सुहानी, जिसमें आप सुनेंगे एक से बढ़कर एक गीत। तो दो गानों के बाद मैं आपसे मिलता हूं और शुरुआत करते हैं परिचय मूवी के इस गाने से।

5:20 हो चुके हैं। राम लखन फिल्म से ये गाना था, मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक और आनंद बख्शी के बोल थे। 10 जून 2026 बुधवार की गर्मा गर्म सुबह हो चुकी है, मतलब अभी तो इतनी गर्म नहीं लेकिन हाँ गर्मी तो है। अब भोर सुहानी शो का नाम शुरू हो चुका है और मेरे यानी पंकज के साथ आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। अब भाई हम दिल्ली वाले हैं, तेज गर्मी में भी हम लोग सुबह चाय पी कर जो है हमारी आंख खुलती है, बाकी तो उससे पहले जब तक हम चाय वगैरह ना पी लें तब तक तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल आलस गया ही नहीं है। बाकी आपकी आलस से आंखें भरी जो हैं वो मैं खोल दूंगा इन गानों से, तो बस आप इन गानों का मजा लीजिए और दो गानों के बाद मैं आपसे मिलता हूं। और ये गाना आप सुनिए त्रिदेव फिल्म से साधना सरगम और मोहम्मद अजीज की आवाज में, मजे लीजिए इस गाने का। मुझे पता है आपको ये गाना पसंद है इसलिए मैंने पहले ही एडवांस में इस गाने को निकाल के रख लिया था। अब आप सुनिए और झूमते रहिए।